और अब हमारे पास एक और मैसेज आ गया है, ये है गांव नथाना से, पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का। इन्होंने भी कहा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें, खुश रहें। जी हाँ, आप तो फिर सुनिए हमारी पसंद का और साथ में वो आपकी भी पसंद बन जाएगी।

और साथ में हमारे पास एक मैसेज और आया है, चलते चलते मैं ये भी पढ़ दूं। धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड निसार से, ये निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और बेबी आलिया आयान बाबू का, ये भी कह रहे हैं कोई भी गीत सुनवा दीजिए, तो इनकी फरमाइश पूरी करते हैं।

और हम कहेंगे जो मिला उसके लिए शुक्रिया, और जो नहीं मिला उसका भी कोई मन नहीं, उसका भी शुक्रिया, क्योंकि मेरी जिंदगी आज जो हसीन है और इसे पूरी शिद्दत से जीना चाहते हैं, और चाहते रहिए, क्योंकि इसी वादे के साथ फिर होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक के लिए आपकी फरमाइश लेके हम हाजिर हो जाएंगे। सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे तो वही से
1: अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: जी हाँ जानकार बनिए और सतर्क रहिए यही बात तो सच में मानने वाली है और साथ में जब हम जिंदगी की बातें करते हैं तो हमें याद आता है कि मुस्कुराते रहिए खुश रहिए अपनी जिंदगी अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को दिल से महसूस करते रहिए क्योंकि ये बड़ी मुश्किलों से मिलती है और इस मुश्किल घड़ी में जब हम मुस्कुराते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है तो इसीलिए हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि हम हाजिर हो जाएंगे हर बार आपके लिए खास आपकी फरमाइश आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर तो चलिए अब ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर 819 किलो हर्ट्ज पर और डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार
4: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई के फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया और लोगों की जान बच गई राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया जो अत्यंत प्रशंसनीय है भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने साबित कर दिया कि असली हीरो सबसे मुश्किल समय में ही सामने आते हैं इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी की प्रशंसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शिक्षाविद यूपीएससी अधिकारी और देशभर के अन्य हितधारकों की भागीदारी होगी
5: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित किए जा रहे हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएडए के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकीय पुस्तिका विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे रक्षा मंत्रालय ने सैन्य नर्सिंग सेवा के 101वें स्थापना दिवस पर उन सभी नर्सिंग कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है जो एक सदी से भी अधिक समय से

इस समर्पण, करुणा और सेवा की भावना के साथ बहादुर सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में सफदरजंग मकबरे पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता की शुरुआत घर से होनी चाहिए और इसका विस्तार कार्यालयों, आसपास के क्षेत्रों तथा सार्वजनिक स्थानों तक होना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वच्छता के लिए किए गए योगदान का भी जिक्र किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान की थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव

0: Indian athletes will also be competing across a wide range of sports, including shooting, judo, track cycling, golf, canoe slalom, taekwondo, tennis, sepak takraw, rugby sevens, and sport climbing. India's overall tally has reached 62, including 10 gold, 22 silver, and 30 bronze. Saudi authorities have arrested an Omani co-pilot after he stabbed the captain and attempted to crash a Fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv in Israel. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित होने वाले संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोह का समापन होगा जो पिछले 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री यूपीएससी शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, भारत सरकार के विशिष्ट अधिकारी, शिक्षाविद और काफी लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस सब का विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसीआर खान, मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
2: नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट विच इज मार्किंग द सेंटिनरी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट अपॉइंट्स इंडिया सिविल सर्वेंट्स। एंड नाउ श्री अजय कुमार, चेयरमैन यूपीएससी, इज एड्रेसिंग।
3: माननीय कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय कैबिनेट सचिव श्री सोमनाथन, संघ लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्यगण, राज्य लोक सेवा आयोगों के सम्मान्य अध्यक्ष एवं सदस्यगण, संघ लोक सेवा आयोग के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष और सदस्यगण, वर्तमान और सेवानिवृत्त सम्मान्य अधिकारीगण, सम्मान्य वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे प्रिय सहयोगियों, संघ लोक सेवा आयोग की शताब्दी के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और सम्मान की बात है। मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे संस्थान की अध्यक्षता करता हूं जो सिविल सेवाओं और सशस्त्र बलों के लिए सुयोग्य अधिकारियों का चयन करता है। यह वे अधिकारी हैं जो दशकों से राष्ट्र के निर्माण एवं सुरक्षा में लगे रहे हैं और आने वाले समय में विकसित भारत के सपने को साकार करने की जिम्मेवारी भी इनके कंधों पर रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम केवल आयोग के 100 वर्षों की का जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि लोक विश्वास के 100 वर्षों का महोत्सव भी मना रहे हैं। आजादी के बाद पीढ़ियों से देश के युवा देश सेवा के सपने लेकर आयोग के द्वार पर आते रहे हैं और आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें केवल और केवल उनकी योग्यता की कसौटी पर ही कसा जाए, कोई भेदभाव नहीं, पूरी निष्पक्षता से उनका चयन हो। आयोग पर विश्वास केवल भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, ये भारत के संविधान द्वारा आयोग को सौंपी गई समस्त जिम्मेवारियों में झलकता है, चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, डेपुटेशन या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का मामला हो। आयोग ये भली भांति समझता है कि विश्वास बनने में वर्षों लग जाते हैं और उसे बनाए रखना उससे भी बड़ी साधना है। इसलिए आयोग के लिए हर कार्य केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व है जिसे हम प्रतिबद्धता, प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा से निभाने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आयोग हर साल लगभग 250 भर्ती प्रक्रियाएं आयोजित करता है। इसका अर्थ है लगभग हर वर्किंग डे पर

0: आयोग कोई ना कोई नया परिणाम घोषित करता है। सन 2013 में हमारी परीक्षाएं केवल 45 शहरों में आयोजित होती थी, आज देश के 86 शहरों में होती हैं। आज सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में लगभग 30% महिलाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डुप्लीकेट एप्लीकेशन की पहचान, उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए करोड़ों दस्तावेजों का ओसीआर द्वारा रियल टाइम इवैल्यूएशन और परीक्षा केंद्रों पर लाखों उम्मीदवारों का फेस ऑथेंटिकेशन कुछ ऐसे हालिया उपाय हैं जिन्हें आयोग ने निष्पक्षता और सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम शताब्दी का उत्सव मना रहे हैं तो हम कृतज्ञतापूर्वक उन सभी का भी स्मरण करते हैं जिनकी साधना से इस संस्थान को यह गरिमा मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस शताब्दी समारोह को हम सभी के लिए और भी स्मरणीय बना दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।
1: संबोधन दे रहे
2: माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से विनम्र निवेदन, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें माननीय।
1: और अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे।
3: परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि आज के दिन का क्या महत्व है, क्या अहमियत है, क्या इतिहास है। आज के दिन हम एक ऐसी संस्था के 100 साल मना रहे हैं जिसका जन्म हिंदुस्तान की आजादी से पहले हुआ था। एंड देयरफॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन विच कैरीज द लेगेसी ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एंड द फ्लेवर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। 100 वर्षों के इस गौरवमय यात्रा में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस विशाल देश में अनेकों अनगिनत छिपी हुई विभूतियों को तलाशा, खोजा, फिर तराशा और तराश कर इस काबिल बनाया कि वो देश की प्रशासनिक जिम्मेवारियां निभा सके। एंड देयरफॉर यूपीएससी ट्रूली पर्सोनिफाइज सरदार पटेल्स विजन ऑफ स्ट्रांग, पावरफुल एंड प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि 100 साल के इस लंबे सफर में पिछले 10-12 साल एक खास मकाम रखते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गवर्नेंस रिफॉर्म्स के चलते इन 12-13 सालों में यूपीएससी ने कई आयाम हासिल किए, कई कीर्तिमान स्थापित किए। नतीजे के तौर पर जहां यूपीएससी के द्वारा होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता में इजाफा हुआ और लोगों का भरोसा भी बढ़ा। यदि बात करें संख्या की तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में यूपीएससी द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या रही 45,431 और इसकी तुलना में एनडीए के पहले 10 वर्षों में यह संख्या बढ़ करके हो गई 50,906 और अगर हिसाब लगाया जाए 12 साल का तो यह आंकड़ा 65,000 पार कर जाता है। अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंटीग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर, जैसे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, जैसे प्रोविजनल आंसर की ऑन दी वेबसाइट और प्रतिभा सेतु, सिविल सर्विसेज एग्जाम के वो उम्मीदवार जो आखिरी चरण में किसी कारण असफल रह गए उनके लिए विकल्पित जॉब ऑप्शंस, और अभी हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। आज यूपीएससी एक रोल मॉडल बन चुका है। देश विदेश की हरेक रिक्रूट

0: रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए आज दुनिया भर से अनेकों मुल्कों से प्रतिनिधिमंडल यहां आकर के यूपीएससी की नियुक्ति प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। आज यूपीएससी एक बेंचमार्क है, एक यार्डस्टिक है, एक मापदंड है जिसके ऊपर हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी पूरा उतरना चाहती है। और अंत में केवल इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे सामने सन 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की रचयिता है यूपीएससी। यूपीएससी इज इंडीड द आर्किटेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू डेस्टिनेशन 2047। विरासत और विकास का यह खूबसूरत मिश्रण इसी तरह बना रहे, इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was Dr. Jitendra Singh,
2: आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए हृदय से आभार माननीय मंत्री महोदय।
1: इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग पेंशन एंड ग्रीवेंसेस and the honorable prime minister of india shri narendra modi is the guest of honor at the centenary celebrations of the union public service commission and a short film on upsc
3: karodo sapne aur ek atoot kasauti merit saal dar saal jan seva ke liye 200 se adhik parikshaon ke madhyam se सबसे योग्य प्रतिभा को चुनना यूपीएससी द्वारा सटीकता का राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसमें भाग लेती है भारत की विविधता, 48 विषय, 22 संवैधानिक भाषाएं, लाखों परीक्षक और अंत में सिर्फ एक मेरिट लिस्ट। इतनी विविधता को एक ही राष्ट्रीय कसौटी पर लाना, यही यूपीएससी की उपलब्धि है। 100 वर्षों में परीक्षा का आकार बढ़ा तो अवसर का दायरा भी। 1957-58 में लगभग 1000 अनुसूचित जाति कैंडिडेट से 450 गुना बढ़ना, 100 से भी कम अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट से आज 1500 गुना बढ़ना, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, अतिरिक्त समय, स्क्राइब की सहायता मिलना, बदलते भारत के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, 1952 में 3 से बढ़कर 2025 में लगभग 300 हुई, जिनमें टॉप 25 में 11 महिलाएं शामिल हैं। लाखों कैंडिडेट्स, हजारों परीक्षा केंद्र, निष्पक्षता की रक्षा कैसे हो? यूपीएससी ने चुनी न महंगी मशीनें, न भारी ढांचा, बस एक स्मार्टफोन। 2025 से सभी 2072 केंद्रों पर रियल टाइम फेस ऑथेंटिकेशन, 7 सेकंड में पहचान, हर मिनट 12,000 सत्यापन, एआई से एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स की जांच, प्रतिभा सेतु अंतिम सूची से चूक गए प्रतिभाशाली कैंडिडेट को देता है एक और अवसर। तभी तो सर्वोच्च अदालत से लेकर लाखों युवाओं का यूपीएससी पर है अटूट भरोसा।
4: यूपीएससी एंड इट्स कंडक्ट इज ऑलवेज टॉप नॉच। देयर इज नो प्रॉब्लम इन कंडक्टिंग ऑफ पेपर्स, देयर इज नो लेट शेड्यूलिंग ऑफ पेपर्स, नो कैंसिलेशन ऑफ पेपर्स। आई थिंक दैट्स ऑलमोस्ट द बेस्ट बॉडी यू कैन गेट।
5: बहुत ही ज्यादा फेयर सिलेक्शन होता है कि आप आओगे, आप अपनी तैयारी करके आओ और आपको मौका दिया जाएगा और आपका इवेल्युएशन होगा।
3: 100 वर्षों में भारत बदला, यूपीएससी भी बदला, लेकिन लक्ष्य वही है, प्रतिभा की तलाश, निष्पक्षता का संकल्प और अडिग रहकर हर कर्तव्य का पालन।
6: कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। ये समय तेजी से बदलाव का समय है।

0: And the Honorable Prime Minister will now release a commemorative postage stamp, a commemorative coin, and a publication titled 100 Landmark Judgments. And the postage stamp is priced at 5 rupees, and it says 100 years of Union Public Service Commission. It's indeed a collector's item, and the postage stamp and cover is a special commemorative postage stamp and cover that is available as a collector's item. And this also, a beautiful coin which depicts the UPSC building from 1926 to 2026, and it is valued at 100 rupees. And the publication, 100 Landmark Judgments. The commemorative postage stamp, the commemorative coin, and 100 Landmark Judgments publication have been released by the Honorable Prime Minister.
1: Maranee Pradhanmantri ne smarak ticket aur sikka jari kiya. Aapko bata de, यूपीएससी के सौवर्ष के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है अब समारोह
0: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द गैदरिंग हियर टू मार्क 100 इयर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पीके मिश्रा जी टीवी स्वामीनाथन जी अजय कुमार जी यूपीएससी के सभी माननीय सदस्यगण अलग अलग राज्यों से आए सभी पीएससी के चेयरमैन अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों मैं आज किस बात करने से पहले कल जो एक घटना घटी और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई उनकी सारवार चल रही है आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें साथियों आज का ये दिन यूपीएससी के 100 वर्षों के उत्सव के साथ ही एक विरासत का भी उत्सव है ये उत्सव उस आकांक्षा का है जिसे हर वर्ष लाखों लाख युवा उसे जीते हैं। ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, टेक्नोलॉजी बदली, सिलेबस बदले, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। और ये आप सभी की बहुत बड़ी पूंजी है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर अभी यहीं स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है। मैं 100 वर्ष की इस यात्रा से जुड़े सभी महानुभावों का वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं एक छोटी सी गैलरी बनाई है, उसका निरीक्षण कर रहा था और आप सबसे भी कहूंगा कि 10-15 मिनट लगेंगे, जरूर देखें। और मैंने उसमें 75 साल के कार्यक्रम का भी एक चित्र देखा जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्रनाथ दिखते हैं। आज 90 साल की आयु में हमारे बीच मौजूद है। साथियों, से कितने ही लोग हैं जिन्होंने इस यात्रा को विश्वास में बदला है, समयाकुल परिवर्तन किए हैं और संस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। जब मैं गैलरी देख रहा था तो 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी प्रक्रिया से जब गुजरे थे, उसकी सारी जानकारी वहां है। और मेरा इस बात पर ध्यान गया कि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी लेकिन संस्कृत का पेपर हुआ करता था और सुभाष बाबू ने संस्कृत का पेपर लिखा है। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करूंगा। आजादी के बाद उनके सामने केवल एक देश को आजाद रखने की चुनौती नहीं थी, उनके सामने एक राष्ट्र को चलाने की चुनौती भी थी। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जिस स्टील फ्रेम की जरूरत थी, वो स्टील फ्रेम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। उन्होंने इस संस्था को आजाद भारत का एक प्रमुख स्तंभ बनाया, इसे सशक्त किया। साथियों, 1926 में जब इस संस्थान की नींव रखी गई थी, तब उस समय की प्राथमिकताएं अलग थी। उस समय व्यवस्था का फोकस और उसका समर्पण दोनों ही ब्रिटिश राज के प्रति था। देश आजाद हुआ तो आजाद भारत के सपने और भारत की व्यवस्था ये फोकस में रहे, केंद्र में रहे।

ते दशकों में यूपीएससी ने अपने दायित्वों को बेहतरीन तरीके से निभाया है और इस बारे में यहां मंच से भी काफी बातें हुई हैं और इसलिए मैं न उसका पुनरावर्तन करना चाहता हूं न ही उसके विस्तार में जाना चाहता हूं। इतिहास से आगे बढ़कर अब हमारे सामने भारत का भविष्य इंतजार कर रहा है। 21वीं सदी का एक क्वार्टर 25 साल बीत चुके हैं, आने वाले 20-25 साल भारत के लिए, भारत के हर व्यक्ति, भारत की हर संस्था के लिए बहुत अहम है। इसलिए आज मैं अपनी चर्चा का फोकस इसी दिशा में रखूंगा। साथियों, विकसित भारत के लिए अब जिस तरह की गवर्नेंस देश को चाहिए उसका बहुत बड़ा माध्यम यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोग भी है। आज आप जिन युवाओं की भर्ती कर रहे हैं वो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और वही विकसित भारत के सबसे बड़े बेनिफिशियरी भी होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें दो कसौटियों को हमेशा याद रखना है। पहली कसौटी है नेशन फर्स्ट और दूसरी कसौटी है सिटीजन फर्स्ट। यही दो कसौटियां हैं जिन पर हर सिलेक्शन को कसा जाना है और जब इस भाव से कैंडिडेट को परखा जाएगा, इस भाव से भरे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति उतनी ही सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। साथियों, 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। भारत आज के मुकाबले और अधिक अर्बन होगा, गांव और शहरों का अंतर कम होगा और हमारे नागरिकों, खासकर युवाओं के एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस कहीं ज्यादा बड़ी होगी। आज ही इसका बदलाव दिखाई दे रहा है। इसलिए आज सवाल सिर्फ सर्विस डिलीवरी का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या पब्लिक सर्विसेज आज की इंस्टेंट डिलीवरी वाली दुनिया की गति उसको पकड़ पा रहे हैं क्या, उस हिसाब से चल पा रहे हैं क्या। आज नागरिक किसी सर्विस के लिए हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं करना चाहता। जब एआई हजारों डॉक्यूमेंट्स को कुछ ही क्षणों में प्रोसेस कर सकता है, जब सरकार के पास रियल टाइम डाटा उपलब्ध है, तो नागरिक तेजी से समाधान चाहता है। यही बदलती हुई सोच हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है। इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं,
पब्लिक सर्विस से

आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है। क्योंकि जब मोटिवेशन सही होगा तो बदलती जन आकांक्षाओं के साथ चलना भी आसान होगा, ढलना भी आसान होगा। साथियों, आप में से काफी लोग इस बात से परिचित है कि मैं जब ट्रेनी ऑफिसर से मिलता हूं तो उनसे कहता हूं कि वे लिख कर रखें प्रारंभ में ही और खुद लिख करके उसको रखें, वे सिविल सर्विस में क्यों आए हैं। क्योंकि समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, नई चुनौतियां आती हैं, ऐसे समय में वही छोटा सा नोट उन्हें उनके मूल उद्देश्य की याद दिलाता है। यह उनके लिए एक सेल्फ अप्रेजल टूल भी बन जाता है। यूपीएससी और राज्यों के आयोग भी कुछ ऐसी व्यवस्था को विकसित करने के बारे में विचार कर सकते हैं। साथियों, हमने अतीत का वो दौर देखा है जब माना जाता था कि सरकार ही माई बाप है, लेकिन आज ये दौर है जिसमें हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। यानी देश का नागरिक हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है। हमारे लिए नागरिक की सेवा सर्वोपरि है। इसलिए साथियों, आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका मूल सिद्धांत है प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस। प्रो पीपल यानी सरकार की सुविधा को देखते हुए नहीं, बल्कि नागरिक के हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम करना। प्रोएक्टिव यानी जब समस्या आए तब एक्शन के बजाय समस्या को पहले ही एंटीसिपेट करके उसके समाधान तैयार हो। गुड गवर्नेंस यानी सरकार का अभाव भी ना हो, दबाव भी ना हो और अनावश्यक प्रभाव भी ना हो। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों ही जगह हमें अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इसी स्पिरिट के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो देश की आवश्यकताओं को समझे, जो कानून का पालन कराए, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है। साथियों, आज जिस तेजी से युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो हम सब देख रहे हैं।

इसके बाद जो आने वाला समय है उसमें नई तरह की चुनौतियां समाज के सामने आने जा रही है। एआई को लेकर इस समय विश्व में जो चर्चा छिड़ी हुई है उससे हम सब परिचित हैं। ऐसे में हमारे सिविल सर्वेंट्स भी अलग तरह की परिस्थितियों में काम करेंगे। इन्फॉर्मेशन वॉर की स्थिति होगी, डीप फेक्स होंगे, एल्गोरिथमिक बायस के चैलेंज होंगे, क्लाइमेट जस्टिस जैसे कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे। ऐसे में हमें चयन प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूरदृष्टि को टेस्ट करने का भी उस प्रयासों को भी प्राथमिकता देनी होगी। साथियों, हम सभी जानते हैं देश आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से चल रहा है। ऐसे समय में हमारी परीक्षा कराने वाली एजेंसी को उन रिफॉर्म्स पर तेजी से काम करना होगा जो आज के समय की मांग है। जैसे परीक्षाओं को कराने में लगने वाला समय एक बहुत अहम विषय है। परीक्षा को हमें केवल एक इवेंट की तरह नहीं देखना है, ये इवेंट से कहीं अधिक युवाओं के भविष्य से, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। परीक्षाओं में कुछ महीनों की देरी युवाओं के लिए बड़ा संकट बन सकती है। कोचिंग की फीस, रेंट, ट्रांसपोर्ट का खर्च, ये बहुत बड़ा बोझ उस परिवार पर होता है। इसलिए हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम टाइम सर्टेनिटी के सिद्धांत को अपनाए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए यूपीएससी को, देश के सभी चयन आयोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि बार को लॉक किए बिना हमारी एग्जामिनेशन साइकिल छोटी कैसे हो। वैसे मैं अभी गैलरी में देख रहा था, करीब 100 दिन कम किए हैं, ये तो अब बधाई के पात्र है ही है और मैं आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है, यह एक इक्विटी रिफॉर्म भी होगा। साथियों, आप सभी चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस और डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। पिछले 10 साल में एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप हुआ है जिसमें देश के सभी सीएस 3 दिन साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। उसी प्रकार से 3 दिन के लिए डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश के सभी डीजीपी इकट्ठे होकर के बातचीत करते हैं। और इन कॉन्फ्रेंस में एक प्रयास होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जाने, समझे, सीखे और उचित लगे तो उन्हें अपने राज्य में लागू करें। मुझे बताया गया है कि यूपीएससी हर वर्ष स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। अब उसको और विस्तार देकर के और अधिक प्रोडक्टिव बनाने के लिए और अधिक नए विचारों से भरने के लिए भी उसके रूप रंग व्यवस्था को कैसे नया आयाम दिया जाए उस पर जरूर आप सोचते होंगे। ऐसे प्रयासों से अलग अलग संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा होती है, लेकिन साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टडी करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने प्रोसेस और प्रोसीजर्स की एफिशिएंसी ये कैसे बढ़े, इस पर भी फोकस चर्चा होनी चाहिए।

क्लास लर्निंग के प्रयास से यूपीएससी को भी फायदा होगा और हर राज्य के चुनाव चयन आयोग को भी जरूर लाभ होगा। हमें प्रोसेस और प्रोसीड्यूरल के मानकों को स्टैंडर्डाइज करने पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इससे युवाओं को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, एक और विषय यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है। ये काम भी निरंतर होते

हमारी इन अंदरूनी व्यवस्थाओं के लिए भी, हमारे साथ काम करने वाली टीम के कैपेबिलिटी के लिए भी इन सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, आप सभी को हमेशा याद रखना है कि आपका काम युवा शक्ति के भविष्य से जुड़ा है, यानी युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का जो मिशन है, आप उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और बीते वर्षों में आपने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई भी है। जब यूपीएससी का गठन हुआ था, तब बड़े शहरों, समर्थ परिवारों और बड़े संस्थानों से पढ़े युवाओं को अवसरों का लाभ अधिक मिलता था, लेकिन आज गांवों और कस्बों के युवा भी पब्लिक सर्विस में पहुंच रहे हैं। हमारी बेटियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। 1952 में सिविल सर्विसेज में विमेन कैंडिडेट की संख्या सिर्फ 3% थी, 3%। आज यह 30%, 30% से अधिक हो चुकी है। और यूपीएससी के पूरे इतिहास में 4 विमेन चेयरपर्सन रही है, पूरे यूपीएससी के इतिहास में। ताली बजने का समय अब आएगा। पूरे यूपीएससी के हिस्ट्री में 4, उसमें से 3 2014 के बाद बनी है। ये बदलाव केवल आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि देश में अवसरों का दायरा कितना बढ़ा है। साथियों, 1976 में जब यूपीएससी को 50 साल हुए थे, उस समय की तुलना में परीक्षा देने वालों की संख्या में 45 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है, 44.5 टाइम। यानी आज हमारे सामने टैलेंट का एक बहुत बड़ा पूल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये कार्यक्रम साल भर चलने वाले उन समारोहों का समापन है जो पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: भारत एशियाई खेल 2026 के 12वें दिन पदक तालिका को बढ़ने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होनी हैं। भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखुयांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Golden. कुछ रिश्ते छांव की तरह होते हैं, कुछ यादें तुलसी की पौधी सी महकती हैं, कुछ बातें रसोई से उठती खुशबू की तरह मन में बस जाती हैं। घर इन्हीं से बनता है और आंगन इन्हीं से आबाद होता है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन और इसी के साथ आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। और आज आपके साथ इस सफर में हम सफर रहूंगी मैं आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए जिंदगी की इसी गर्माहट को महसूस करते हैं घर आंगन में, क्योंकि घर में आपसे कोई कहे चाहे ना कहे कि उसे आपसे प्यार है, लेकिन हाँ प्यार तो है, क्योंकि ये सिर्फ कहने का मोहताज नहीं होता, ये महसूस करने का मोहताज होता है।

फिल्म घरौंदा, आवाज रुना लला, आप सुन रहे थे ये गाना। अच्छा दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में हमारे त्योहारों का जो पूरा मौसम है वो शुरू हो जाएगा, तो बातें बस उसी से जुड़ी हुई थोड़ी आपसे करना चाहूंगी कि त्योहार आते हैं तो घर ना जैसे थोड़ा और घर हो जाता है, मानेंगे ना। और रसोई से आती खुशबू, दरवाजे पर सजावट, नए कपड़ों की तैयारी और सबसे बढ़कर अपनों के साथ बैठने का इंतजार। लेकिन आजकल त्योहार का ना एक हिस्सा हमारी मोबाइल की तस्वीरों में भी बसता है, मानेंगे ना। सजावट हुई तो तस्वीर, खाना बना तो तस्वीर, परिवार साथ बैठा तो तस्वीर। और कई बार तस्वीर लेने के चक्कर में हम उस पल को जीना ही भूल जाते हैं जिसे बाद में याद करना था। फिर जरा सोचिए, बचपन में मनाए गए त्योहारों की कितनी तस्वीरें हमें अभी भी सचमुच याद है, शायद बहुत कम। लेकिन यह जरूर याद है कि दादी के हाथ की मिठाई कैसी लगती थी, माँ सुबह से रसोई में क्या क्या बनाती थी, भाई बहनों के साथ कैसी शरारत होती थी, या त्योहार पर कौन दूर से चलकर हमारे घर आया था। याद रहती है ना, बहुत सी ऐसी हमारी बचपन की यादें हमारे साथ ताउम्र चलती रहती हैं। यानी त्योहारों की असली याद शायद कैमरे में कम और एहसास में ज्यादा रहती है। तो देखिए, ये हम जरूर कहेंगे कि तस्वीर जरूर खींचिए, उन्हें सहेजिए भी, मगर कुछ पल कैमरे से दूर रहकर अपने लोगों के साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, अपनी सुनाइए, साथ खाना खाइए, हंसी। क्योंकि कुछ तस्वीरें दीवार पर लग जाती हैं, कुछ मोबाइल में रह जाती हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो तस्वीर बिना भी पूरी तरह हमारे भीतर रहते हैं। लेकिन देखिए, तस्वीर होती हैं तो यादें भी होती हैं। तो आज उसी से जुड़ा सवाल मैं आपके साथ करना चाहूंगी कि आपको अपनी कौन सी ऐसी तस्वीर याद है जिसके साथ आपकी कोई बहुत गहरी याद जुड़ी हुई है, बचपन की हो, जवानी की हो, अभी की हो, कोई भी हो सकती है। क्योंकि ना आपको वो तस्वीरें आपके जहन में पूरे समय बस जाती हैं, कुछ ऐसी खास तस्वीरें होती हैं, तो आप हमें जरूर बताइए। और आप हमें कहाँ बताएंगे? जी हाँ, fmgoldga@gmail.com पर।

मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म माया का ये गीत। और देखिए, तस्वीर से जुड़ा हुआ सवाल हमने आपसे किया है कि आपके जहन में अभी भी कौन सी ऐसी तस्वीर है जिसके साथ आपकी बहुत बेशकीमती यादें जुड़ी हुई हैं। तो हमें बताइए fmgoldga@gmail.com पर। और आप सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम घर आंगन। देखिए दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर अपने भीतर कई ऐसी स्मृतियां समेटे हुए हैं जो हमें सेवा, सम्मान और साहस के अलग अलग रूपों से परिचित कराती है। आज ही के दिन ना भारतीय सेना की मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का स्थापना दिवस मनाया जाता है और सैन्य नर्सिंग की परंपरा भारत में 1888 से जुड़ी है, जबकि इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की औपचारिक स्थापना आज ही के दिन यानी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। युद्ध के कठिन समय से लेकर शांति के दिनों तक सैन्य नर्सों ने घायल और बीमार सैनिकों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सेवा की यही भावना हमें आज के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की ओर भी ले जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने ना 1 अक्टूबर को यह दिवस उन वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनके अधिकारों, गरिमा और बेहतर जीवन के प्रति जागरूकता के लिए समर्पित किया है। उम्र बढ़ना जीवन की स्वाभाविक यात्रा है ना, और इसीलिए सवाल

यह नहीं कि हम अपने बुजुर्गों की देखभाल कैसे करते हैं, बल्कि यह भी है कि उन्हें परिवार और समाज में कितना सम्मान और अपनापन देते हैं। इसी तारीख को हम डॉक्टर एनी बेसेंट को भी अपनी जयंती उनकी जयंती पर याद करते हैं। 1 अक्टूबर 1847 को जन्मी एनी बेसेंट ने भारत में शिक्षा, सामाजिक सुधार और स्वशासन के विचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और फिर स्मरण आता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का, जिनकी पुण्यतिथि भी हम 1 अक्टूबर को ही मनाते हैं, मतलब आज ही उनकी पुण्यतिथि भी है। 1930 के पेशावर कांड में उन्होंने निहत्य प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उनका यह निर्णय साहस और अंतरात्मा की आवाज का एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गया था। 1 अक्टूबर 1989 को उनका निधन हुआ था। तो देखिए, एक ही दिन हमें चार अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं, है ना? और किसी की वर्दी में सेवा, किसी के जीवन में उम्र का सम्मान, किसी के विचारों में बदलाव की चाह और किसी के निर्णय में अदम्य साहस। 1 अक्टूबर शायद हमें यही याद दिलाता है कि समाज सिर्फ बड़ी घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हैं।

फिल्म शोर में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गीत। और देखिए हमारे सवाल के जवाब में हमारे साथ हमारे कौन कौन से दोस्त जुड़े हैं। तो ये है नवीन भाटिया जी मोतीनगर नई दिल्ली से, लिखते हैं स्कूल डेज की फोटो आज है जो आज तक संभाल के रखी है टेंथ क्लास की। हाँ वो वाले समय की ना फोटो सच में सबको दिन में और दिल में हमेशा रहती है। फिर हमारे साथ कौन जुड़ी है, ये उमेश कुमार जी खयाला से, लिखते हैं नमस्ते मैडम जी, हमारी बचपन की तस्वीर हम सब बहन भाई की साथ में वो आज तक है और हमारे माताजी पिताजी की वो तस्वीर भी अच्छी लगती और याद आती है जब हम छोटे छोटे दिखते थे। हाँ ये सारी बातें ना हम सभी को बहुत याद आती हैं, बचपन की कुछ तस्वीर सच में हमारे दिमाग में हमारे ख्याल में हमेशा रह जाती है। फिर अच्छा चरणदास जी लिखते हैं, अच्छा राजू अग्रवाल जी, केशव, विनोद टेलर, साहिल चौधरीवास हिसार हरियाणा से लिखते हैं कि आपके नमस्कार कहते ही आवाज पहचान गया। क्या बात है, शुक्रिया, मतलब आप हमारे साथ में इतने दिल से जुड़े हैं कि आप हमारे लहजे से पहचान जाते हैं कि कौन बोल रहा है, धन्यवाद। ये लिखते हैं कि मैं 3 साल का बच्चा था तब से लेकर आज तक सब कुछ मेरे दिमाग में मौजूद है, लेकिन एक तस्वीर कभी नहीं भूलूंगा, मेरी बेटी का लड़का। ओहो ये ना देखिए मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि उनका लिख रहे हैं कि उनके 7 साल का मासूम हम छोड़कर चला गया। देखिए मतलब ये मेरी संवेदनाएं आपके परिवार के साथ, और आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर इसके बाद में हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी जी, इनके साथ अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, लिखते हैं आदरणीय सोनाली जी स्वस्थ साधर प्रणाम, आपको भी हमारा प्रणाम सर। फिर लिखते हैं कि बचपन की बहन और भाइयों की ब्लैक एंड व्हाइट ग्रुप फोटो जो आज भी हमारे दिल में बहुत बड़ी याद है और हमेशा रहेगी। आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन मुखी जी। आप सभी दोस्त हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो लगातार कहीं ना कहीं एक प्यार जैसी कौंधती रहती हैं, एक लहर उठाती रहती हैं, कुछ तस्वीर दिमाग में हमेशा बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रही हैं आपका और हमारा प्यारा कार्यक्रम घर आंगन, साथ ही आप हमें आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी सुन पा रहे हैं, और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। देखिए हम अक्सर चाहते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा हो, है ना, आप भी यही चाहते हैं, तो सड़कें चमकती रहें, गलियों में कूड़ा न हो, नालियां साफ रहें और सार्वजनिक जगहों पर गंदगी ना दिखाई दे। वाह वाह कितना अच्छा लगता है ना ऐसा, हम सभी चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारी गली, हमारा मोहल्ला इतना ही साफ सुथरा हो। लेकिन एक सवाल है, क्या साफ सुथरा शहर सिर्फ सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी है? देखिए सुबह जब सफाई कर्मी सड़क पर झाड़ू लगाता है तो उसके कुछ घंटे बाद उसी सड़क पर कचरे का टुकड़ा कौन छोड़ जाता है? कूड़ेदान सामने होते हुए भी उसके बाहर कचरा कौन रख देता है? और घर से निकला छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा जब नाली में पहुंचता है तो वह आखिर वहां तक आता कैसे है, सोचा है कभी? सोचा तो होगा क्योंकि सफाई कर्मी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शहर हमारा भी तो है। फिर साफ सफाई को सिर्फ झाड़ू और कूड़ा उठाने तक सीमित कर देना शायद ठीक नहीं, यह हमारी रोजमर्रा की आदतों से भी तो जुड़ा हुआ है। घर का कचरा सही जगह पर डालना, गीले और सूखे कचरे को अलग रखना, सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा न फैलाना और किसी दूसरे की मेहनत का सम्मान करना, ये छोटी छोटी बातें मिलकर शहर की तस्वीर

टलती हैं। और शायद सफाई कर्मी के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि वह जिस जगह को साफ करके जाए हम उसे दोबारा गंदा न करें, क्योंकि शहर की सफाई में झाड़ू किसी एक के हाथ में हो सकती है लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक समावेशी इसमें योगदान जरूरी है ना। फिर आप जहां जाएंगे हर जगह आपको खूबसूरत निगाहें और खूबसूरत चीजों का दर्शन होगा, है ना।

फिल्म प्रेम पर्वत में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। देखिए हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़ी है, लिखते हैं सोनाली बेटा राम राम, राम राम सर। फिर ये लिख रहे हैं कौन, ये है गौरीशंकर जी नांगलोई से। ये लिखते हैं बचपन में जो दीवार पर तस्वीर बनाया करते थे दिवाली के टाइम पर वह आज भी याद है। उस दौरान घर में कैमरे का साधन भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, लेकिन रेडियो सुनते थे। वह यादें दिमाग में फिट रहती है, जो मन में खुशी उस टाइम पर महसूस होती थी वह आज नहीं है। अब तो अपनी सोच बदलकर खुश रहने की कोशिश करते हैं, सब अच्छा ही होगा। सच बात है, और आपकी यही पॉजिटिव जो बातें हैं, जो सकारात्मक सोच है, ये हमेशा बनाकर रखिएगा। फिर हमारे साथ ये जुड़े हैं चौधरी वास जी, जी पंकज बिंदल जी हैं। ये लिखते हैं कि उनके पिताजी को तस्वीरों से बहुत प्रेम है और वो पूरे समय अपने घर में अपने पसंदीदा लोगों की तस्वीरें लगा के रखते हैं। क्या बात है। देखिए ऐसी ही चीजें जो होती है ना, वो हमें अपने उन बीते दिनों की याद दिलाती है, जब हमारे पास वो जो समय था वो शायद उन्हीं में कैद होकर रह गया, तो उन तस्वीरों को देखकर हम लगातार उन्हीं सारी बातों को दोबारा से याद करते हैं। चलिए जब हम बात करते हैं पुराने समय की तस्वीरों की, तो ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताना जरूरी समझते हैं जो हमारी धरोहर से जुड़ी हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। ये है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का भूसरा गांव। ये ना अपनी एक ऐसी पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है, जिसमें सुई और धागे के सहारे कपड़े पर सिर्फ आकृतियां ही नहीं बल्कि जीवन के रंग भी उकेरे जाते हैं। यह कला, पता है आपको क्या नाम है इसका? ये है सुजनी कढ़ाई। सुजनी की परंपरा बहुत पुरानी है और पहले पुराने कपड़ों की कई परतों को सिलकर उन पर रंगीन धागों से कढ़ाई की जाती थी। इनका इस्तेमाल खास तौर पर नवजात शिशुओं के लिए बिछावन या ओढ़ने के कपड़े के रूप में किया जाता था, और धीरे धीरे इस कढ़ाई में रोजमर्रा की जीवन, प्रकृति और सामाजिक अनुभवों से जुड़े चित्र भी दिखाई देने लगे। फिर आपको पता है दोस्तों, भूसरा की जो महिला कारीगरों ने ना इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। खास बात यह है कि सुजनी कढ़ाई सिर्फ सजावट नहीं रही बल्कि ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों और उनकी कल्पना को अभिव्यक्ति देने का माध्यम भी बन गई। इस पारंपरिक कला को 2006 में भौगोलिक संकेत यानी GI मान्यता मिली। सोचिए, एक सुई, कुछ धागे और कपड़ों का एक साधारण सा टुकड़ा और उससे बनती ऐसी कहानी जो पीढ़ियों का सफर तय कर लेती है। यही तो हमारी लोककला की खूबसूरती है ना। हाथों का हुनर जब परंपरा से मिलता है तो साधारण कपड़ा भी एक विरासत बन जाता है, और इसी तरह विरासत है क्या हमारे लोकगीत भी। तो आइए सुनते हैं लोकगीत की मिठास लिए ये एक गाना जो फिल्म हीरा मोती से है।

फिल्म हीरा मोती में आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये एक बहुत प्यारा सा गीत। अच्छा देखिए, बातों बातों से बातें निकलती हैं तो यादें भी आपको बार बार आती है, तो ऐसे ही हमारे जो श्रोता है उमेश कुमार जी, वो एक और हमें मेल करते हैं और फिर उसमें अपनी यादें सहेज रहे हैं। कह रहे हैं, नमस्ते मैडम जी, मेरे पिताजी ने दीवार पर लक्ष्मी माता जी की तस्वीर बनाई हुई थी जब हम छोटे थे, वो तस्वीर भी आज तक बहुत याद है। अरे वाह, देखिए फिर ऐसी ही तो चीजें हैं जो हमेशा याद रहती हैं। तो बस आप भी हमारे साथ अपनी यादों को संजोइए, हमें बताइए आपकी कौन सी तस्वीर आपकी सबसे ज्यादा करीब है। दोस्तों, हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित रहे, वह घर से बाहर निकले तो मन में डर न हो, रास्ते सुरक्षित हों और उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन बेटी की सुरक्षा की बात करते हुए क्या हम कभी यह भी सोचते हैं कि उसे खुद अपने लिए खड़े होने के काबिल कैसे बनाया जाए। बेटी को न सिर्फ यह बताना काफी नहीं है कि किन रास्तों से बचना है, किससे सावधान रहना है, बल्कि उसे यह भी पता होना चाहिए कि मुश्किल परिस्थिति में अपनी बात कैसे रखनी है, मदद कैसे मांगनी है, अपने फैसले कैसे लेने हैं और अपने अधिकारों को कैसे समझना है। और आत्मनिर्भरता सिर्फ नौकरी करने या पैसा कमाने तक सीमित नहीं है। अपने छोटे बड़े फैसले खुद लेने का भरोसा, पैसों को समझने की आदत, घर और बाहर के जरूरी काम संभाल पाने का आत्मविश्वास, ये सब उसकी आत्मनिर्भरता का ही हिस्सा है। कई बार ना प्यार में हम बेटियों के लिए हर मुश्किल आसान कर देते हैं, वह करना कर देना चाहते हैं, लेकिन हर मुश्किल को उनसे दूर कर देना शायद उन्हें मजबूत बनाने का तरीका नहीं है। देखिए, प्यार कीजिए, लाड़ कीजिए, लेकिन ना उन्हें रास्ते खुद तय करने दीजिए, कुछ फैसले खुद लेने दीजिए और कभी कभी गलती करने की गुंजाइश भी दीजिए, है ना। क्योंकि बेटियों के साथ हमेशा कोई और खड़ा रहे यह जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि जब कभी उसे अकेले खड़ा होना पड़े तब उसे अपने भीतर की ताकत पर भरोसा हो। सुरक्षित बेटी जरूरी है, लेकिन सुरक्षित होने के साथ अपने फैसले खुद लेने वाली, अपने पैरों पर खड़ी और अपने जीवन की दिशा तय करने वाली बेटी, शायद यही उसकी असली मजबूती है।

फिल्म खामोशी द म्यूजिकल, इसमें आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति के साथ कुमार शानू की आवाज में ये गीत। अच्छा दोस्तों, आप मुझे बताइए, आप भी मानेंगे कि कभी कभी समझ शब्दों की बहुत मोहताज नहीं होती, है ना? सामने वाला कुछ भी कहे या कुछ कहे भी नहीं, फिर भी उसकी आंखों का ठहराव, आवाज की हल्की सी थरथराहट या अचानक आई खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। रिश्तों की असली खूबसूरती शायद इसी में है कि हर बात कहनी न पड़े, कुछ बातें इशारों में ही पढ़ ली जाएं। किसी के मैं ठीक हूँ के पीछे जो छिपी उदासी है उसको पहचान लेना, किसी की हंसी में थकान सुन लेना या बिना पूछे उसके पास चुपचाप बैठ जाना, यही तो वह समझ है जो कभी शब्दों से कहीं आगे होती है, है ना? और जिन्हें समझना आता है उन्हें हर बात बतानी नहीं पड़ती, और जिन्हें नहीं समझना उनके सामने पूरी कहानी कह देने के बाद भी कुछ अधूरा ही रह जाता है। इसलिए आप भी समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बार बहुत सी बातें अनकही भी होती हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं।

0: फिल्म आंगन की कली। इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और दोस्तों, अब घड़ी हमें यही इशारा कर रही है और आप भी समझ गए कि अब हम इस कार्यक्रम को आगे और नहीं बढ़ा सकते। ये कार्यक्रम का जो सफर आपने तय किया वो किया आपके रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, बहुत अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब खुश रहें। इन्हीं मनोकामनाओं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: घर आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए प्रेरित हों।
1: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है और नागरिकों की सेवा करना सबसे जरूरी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बलों के बीच आपसी तालमेल और एकीकरण पर बहुत जोर दे रही है। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर श्री सिंह ने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत कर दिया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर और कुशल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। फाइनल शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। एशियाई खेल 2026 में भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखू यांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। गणेश ने कांस्य पदक के प्लेऑफ में वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे ना तो किसी उम्र की सरहद में हम बांध सकते हैं और ना ही इसे खत्म कर सकते हैं। जब दो दिल मिलते हैं तो जो फिजाएं होती हैं उनमें एक अलग सा संगीत खुल जाता है ना। अब आप बात करेंगे कि आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत इस मोहब्बत के साथ क्यों कर रहे हैं, तो भाई अगर हम रुपहले पर्दे की बात करें तो सन 1981 की वो क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसने प्यार की एक नई परिभाषा लिखी। जी हाँ दोस्तों, वो फिल्म प्रेम गीत। तो थाम लीजिए अपने दिल को, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में आपको हम ले चलेंगे फिल्म प्रेम गीत के उसी सुहाने सफर पर। जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ किस्से, उसके संगीत के बारे में, उसकी कहानी के बारे में, और सुनेंगे वो गाने जो आज भी आपकी और हमारी जुबान पर चढ़े हुए हैं। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ और अपने संदेशों के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, और शुरुआत में लीजिए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत फिल्म प्रेम गीत से। तो करते हैं सफर की शुरुआत।

की फिल्म प्रेम गीत सन 1981 में बनी ये बॉलीवुड फिल्म जिसका निर्देशन किया सुदेश सर ने। और इस फिल्म के कलाकारों की अगर बात करें तो राज बब्बर और अनीता राज के खूबसूरत अदाकारी से सजी ये फिल्म प्रेम गीत। और अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की तो इतनी इमोशनल, इतनी प्यारी कहानी है ना कि वाकई में इस फिल्म को देखते हुए ना हर कोई इंसान इस फिल्म की कहानी में डूब जाता है। और कहानी हम आपको बता देते हैं भाई, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपकी यादें ताजा हो जाएंगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो कहानी सुनकर मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आप जरूर इस फिल्म को देखने का मन करेगा आपका। फिल्म की कहानी घूमती है आकाश यानी कि राज बब्बर के इर्द गिर्द, जो कि एक मशहूर शायर है और अपने अनग नाम यानी कि निशांत से वो शायरी लिखते हैं। आकाश की जो शायरी है उसकी दीवानी होती है शिखा यानी कि अनीता राज, जो कि एक डांसर है और बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की है। खतों से सिलसिला शुरू होता है उन दोनों का धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी फैन होती है, बहुत बड़ी दीवानी होती है आकाश की शायरी की, और खतों से सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे गहरी मोहब्बत में बदल जाता है और आकाश अपनी शायरी से शिखा का दिल जीत लेता है। दोनों सपने देखते हैं कि शादी में बनने का, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में तो उनके कुछ और ही मन लिखा था। कहानी में ट्विस्ट या कहें कि एक दर्दनाक मोड़ आता है जब अचानक से शिखा की तबीयत खराब होती है और जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि शिखा को ब्रेन ट्यूमर है और उसकी जिंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। ये बात जानने के बाद आकाश पर तो मानो मतलब एकदम से बहुत सारा दुख आकर के गिर जाता है और वो बहुत परेशान होता है, लेकिन शिखा के सामने वो सब सच्चाई नहीं आने देता है और अपने दिल में उस दर्द को छिपाकर वो शिखा की जो जिंदगी होती है पूरी तरह से उसको खुशियों और प्यार से भरने में लग जाता है। शिखा को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देता कि उसकी जो सांसें हैं वो गिनकर चल रही हैं। और अंत में आता है फिल्म का आखिरी हिस्सा या कहें कि क्लाइमेक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। यहां पर शिखा आकाश की बाहों में दम तोड़ देती है, लेकिन उसके प्यार का गीत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक छोटे रूप में कहें तो जो प्रेम गीत फिल्म है वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि प्यार में त्याग, समर्पण और हर पल को खुलकर जीने की एक खूबसूरत सी कहानी है। है ना बहुत ही खूबसूरत? तो लीजिए चलते हैं अगले पड़ाव पर आशा जी की आवाज में इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सन 1981 की ये खूबसूरत सी रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म प्रेम गीत। जी दोस्तों, इस फिल्म यानी कि प्रेम गीत से हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को मिली एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री। जी हाँ दोस्तों, वो अभिनेत्री अनीता राज। जी हाँ दोस्तों, अनीता राज की ये पहली फिल्म थी और इस पहली ही फिल्म में उन्होंने काम किया राज बब्बर जी के साथ में, और उनकी दोनों की जो केमिस्ट्री है वो इतनी पसंद की गई कि वो रातों रात लोगों के दिलों पर छा गई। और राज बब्बर साहब को इस फिल्म में लेने के पीछे भी एक अलग ही कहानी है, क्योंकि राज बब्बर साहब ने उससे पहले सन 1980 में बीआर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में काम किया था, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया था। और उनकी उस फिल्म में जो एक्टिंग थी, इतनी दमदार एक्टिंग उन्होंने की थी कि इंडस्ट्री को उन्होंने पूरी तरह हिला के रख दिया था। और हर निर्माता निर्देशक समझ गया था कि भाई ये जो कलाकार है, ये अभिनेता है, हर किरदार में, हर तरह के किरदार में जान फूंक सकता है। और क्योंकि जो हमारे इस फिल्म के निर्देशक हैं, उनको चाहिए था कोई ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा अभिनेता जो कि उनके इस बहुत ही इमोशनल और थोड़े गहराई से जुड़े हुए किरदार में जान फूंक सके, और उस किरदार के लिए राज बब्बर से बेहतर अभिनेता कोई हो ही नहीं सकता था। और यही सोचकर सुदेश इस्सर जी ने इस फिल्म में नए कॉम्बिनेशन, एक नई फ्रेश जोड़ी को लाने का फैसला किया, और बनी ये खूबसूरत जोड़ी अनीता राज और राज बब्बर साहब की। वैसे आपको बता दें कि जो अनीता राज हैं, वो अभिनेता जगदीश राज जी की बेटी हैं और उन्होंने इसी फिल्म से किया अपने फिल्मी सफर की शुरुआत। वैसे जब अनीता राज इस फिल्म में आई और उन्होंने जब पहला दिन शूटिंग का, तो वो बहुत घबराई हुई थी, बहुत नर्वस थी कि राज बब्बर साहब जो कि उस वक्त में बहुत ज्यादा फेमस थे, और उनकी जो आवाज थी वो जिस तरह की एक इंटेंस आवाज उनकी थी, उसका तो उस वक्त में हर कोई दीवाना था। उनके साथ काम करते करते वो बहुत नर्वस थी, और जब इस फिल्म की शूटिंग शिमला में हो रही थी, एक रोमांटिक डांस सीन की, तो अनीता राज जी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। और जब राज बब्बर साहब ने ये देखा कि भाई जो ये लड़की है तो बहुत बुरी तरह घबराई हुई है, इस तरह से कैसे फिल्म की शूटिंग होगी, किस तरह से केमिस्ट्री दिखेगी, तो वो अनीता जी के पास गए और उन्होंने बोला कि देखो भाई, मुझे समझो ही नहीं कि मैं राज बब्बर हूं, तुम मुझे आकाश समझो जो कि तुम्हारा दोस्त है, बिल्कुल उसी की तरह अपने एक दोस्त की तरह से मेरे साथ में काम करो। और बस फिर क्या था, अनीता राज का जो डर है वो एक चुटकी में गायब हो गया, और उसके बाद दोनों ने कितनी सहजता के साथ में एक्टिंग की और किस तरह की केमिस्ट्री उनकी पर्दे पर दिखी है, ये तो कहने की बात ही नहीं है। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल फिल्म प्रेम गीत से जगजीत सिंह की आवाज में।

जी दोस्तों, क्या खूबसूरत गीत, क्या शब्द है ना। वाकई में जब इस फिल्म के संगीत की बात आती है ना, तो वाकई पूरी तरह से दिल में उतर जाता है, क्योंकि जो इस फिल्म के गीत हैं उनके शब्द भी पूरी तरह से हमारी रूह में उतर जाते हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि इस फिल्म का जो संगीत है वो भारतीय सिनेमा के गजल सम्राट जगजीत सिंह जी ने बनाया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का पूरा संगीत जगजीत सिंह जी ने तैयार किया और इसके जितने भी दिलकश गीत हैं उनको लिखा मशहूर गीतकार इंदीवर जी ने। शायरी और संगीत का एक खूबसूरत बेजोड़ तालमेल जो आज भी सुनने वाले को एकदम तरोताजा कर देता। और उस पर ये गीत जो कि अभी आपने सुना, भाई ये तो जगजीत सिंह जी की करियर का वो गीत है कि उनकी पहचान इस गीत से है। बेशक उन्होंने बहुत सी गजलें की, लेकिन ये गीत ऐसा है कि इस गीत को सुनते ही सबसे पहले जगजीत सिंह का नाम याद आता है ना जी दोस्तों। और जब हम प्रोग्राम को करते हैं तो हमें भी याद आते हैं हमारे बहुत से श्रोता जिनके संदेश हम तक आ चुके हैं। संदेश हम शामिल कर लेते हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव जगुताई, कुमार संचित, प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजल का पंजाब खेड़ा परिवार से जुड़े हुए हमारे साथ भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, तिवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंडा टोला बालू छत्तीसगढ़ से डोमिंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और निमित जी हमारे साथ जुड़े हैं। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता गीता जुड़े हैं। अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खूबसूरत जानकारी के साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता, शिप्रा गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांवफरा से जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हम तक पहुंचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जिला पश्चिम सिंह भूप चाईभासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि गोप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह, नीता जी जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन से। और ये अगला संदेश मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता जी का है और ये संदेश आया है राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, विनोद टेलर, साहिल का गांव चौधरीवास हरियाणा हिसार से। और ये अगला संदेश आया है हमारे पास कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से, और इसको भेजने वाले हैं संदीप, ज्योति, मन्नत मक्कड़ और भारत मक्कड़ जी का। डीबी राणा जी जुड़े हमारे साथ नेहरू विहार से और ये अगला संदेश हम तक आया। अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता और नन्हे पोती अन्विका, तनुश्री गुप्ता जी का, पीरा बाजार, झुमरी तलैया से। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाने वाले हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पल्स और विलिस डिकेस्ट्रो के साथ जनकपुरी सहारनपुर से। सुदर्शन मुखी अनीता जी के साथ जुड़े हैं, सिमरन मुखी उनके साथ हैं। शांतिनगर सोनीपत से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से जी दोस्तों। और अगला जो संदेश है उसको हम तक पहुंचाया है स्वर्ण सिंह जी का, एक बार फिर से संदेश है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक काफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और उनके परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी, मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े। और दोस्तों आज हमारे इस कार्यक्रम एक ही फिल्म में हमने बात की, फिल्म प्रेम गीत के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म का नाम बिल्कुल पूरी तरह इसकी कहानी और गीतों पर सार्थक होता है, प्रेम गीत। जितने भी गीत हैं सब प्यार से भरे हुए। तो दोस्तों अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए इस कार्यक्रम की समाप्ति की, जाएगा कहीं नहीं। 2:30 पर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम

एक ही कलाकार और 3 बजे मैटिनी मेलोडीज के साथ अर्चना गोयल जी। अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर 1:40 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी दे शताब्दी समारोह नूं संबोधन कीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार हथियारबंद फौजां विच तालमेल अते एकीकरण ते बेहद जोर दे रही है। सरकार ने खंड डीलरां लई भंडार रखण दी म्याद घटा के 15 दिन की थी ते भंडार रखण दी सीमा 1000 क्विंटल तय कीती है। केंद्रीय व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ईयू आजाद व्यापार समझौते ते दस्तखत करन अते लागू करन वल होई प्रगति दी समीक्षा की थी। एशियाई खेडां विच भारतीय कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम तिरहुरु ने मर्दां दा व्यक्तिगत कांस्य दा

0: खुराक की यकीनी फराहमी और इश्तराक की जरूरत उजागर की है। उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत के समझौते की पेशरफ्त का जायजा लिया। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में 9 आम शहरी मारे गए हैं और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तीरानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के 100 साल के सफर के दौरान नस्लें, हुकूमतें, टेक्नोलॉजी और निसाब तब्दील हुए हैं, लेकिन इस इदारे पर लोगों का एतमाद आज भी उसी तरह कायम है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी की सदसाला तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने सरकारी सर्विसेज में ऐसे नौजवानों को लाए जाने पर जोर दिया जो सरकारी ओहदों के हसूल के बजाय अवाम की खिदमत के जज्बे से सरकारी मुलाजिमत इख्तियार करें।
1: हम ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत काम के एक नए कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है जिसका बुनियादी उसूल अवाम दोस्त, निहायत सरगर्म और बेहतर हुक्मरानी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत का मंत्र है नागरिक देवो भवा, यानी शहरी ही सबसे अहम है और शहरियों की खिदमत सरकार की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस तर्ज हुक्मरानी की जरूरत है उसे बड़ी हद तक यूपीएससी और रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इदारों के जरिए यकीनी बनाया जा सकेगा। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 बरस के दौरान कई अहम संगे मील तय किए हैं और इसमें कई नए पहलू शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए की जाने वाली सरकारी तकर्रियों में इजाफा हुआ है जबकि भर्ती के निजाम में शफाफियत भी बेहतर हुई है जिसके नतीजे में अवाम का एतमाद मजीद मजबूत हुआ है। यूपीएससी के चेयरपर्सन डॉ अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से मुल्क की नौजवान नस्लें मुल्क की खिदमत के ख्वाब लेकर कमीशन के पास आती रही हैं और यूपीएससी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि उम्मीदवारों को सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर ही परखा जाए। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी के 100 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का और यादगारी डाक टिकट जारी किया और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया किताब का भी इजरा किया। सरकार ने डीलरों के लिए शक्कर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है और स्टॉक रखने की हद 1000 क्विंटल मुकर्रर की है। इसका इतलाक इस महीने की 15 तारीख से होगा और ये नवंबर तक नाफिज रहेगी। सारिफिन के उमूर की वजारत ने कहा है कि सरकार ने शक्कर का स्टॉक रखने के जाब्तों पर नजरसानी की है ताकि जखीरा अंदोजी की रोकथाम की जा सके और त्यौहार के दिनों में सारिफिन के लिए शक्कर की बिला रूकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत मुसल्ला अफवाज को मरबूत करने पर मखसूस तवज्जो दे रही है। आज नई दिल्ली में दिफाई अकाउंट्स के दिन के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि अगर मुआशी निजाम को भी मरबूत कर दिया जाए तो इससे पूरा दिफाई इंतजाम और भी मुअस्सर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिफाई अकाउंट्स का महकमा पूरी वजारत दिफा को जोड़ता है और ये दिफाई निजाम की बुनियाद है। जनाब सिंह ने महकमे से अपील की कि कौमी और बैनुल अक्वामी सतह पर मियारी ऑडिटिंग में बेहतरीन इकदामात को अपनाया जाए। जनाब सिंह ने बताया कि गुज़श्ता माली साल में अखराजात का इंदिराज तकरीबन 100% रहा। उन्होंने मजीद कहा कि ये हुसूलियाबी एक संगे मील की हैसियत रखती है। भारत ने खुराक की यकीनी फराहमी के लिए खुराक को आलाईकार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ खबरदार किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने यह बात अमरीका के मिलवॉकी में G20 वजराए तिजारत

0: मीटिंग के इजलास के दौरान कही। जनाब गोयल ने उजागर किया कि मुश्तरका मकसद ये होना चाहिए कि खुराक की यकीनी फराहमी इस्तेहकाम और तआवुन का जरिया बनी रहे। वजीर तिजारत ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत और इसके निफाज की जानिब पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग के मौके पर तिजारत और इक्तिसादी सिक्योरिटी के यूरोपीय कमिश्नर के साथ बातचीत की। सऊदी अरब के हुकाम ने ओमान से ताल्लुक रखने वाले उसको पायलट को गिरफ्तार कर लिया है जिसने दुबई से इसराइल के शहर तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज के कैप्टन को चाकू मारकर जख्मी करने के बाद हवाई जहाज को गिराने की कोशिश की थी। ओमान के को पायलट ने जहाज के कैप्टन पर चाकू से हमला कर दिया। दो मिनट में यह तैयारा तकरीबन 17,400 फीट नीचे आ गया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज कैप्टन स्मिट माछर की तारीफ की और कहा कि मुल्क को उन पर बेहद फख्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि मुश्किल वक्त में उनके गैर मामूली हौसले और हाजिर दिमागी ने सभी को मुतासिर किया है। उन्होंने उनकी जल्द सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ की और उनके गैर मामूली जज्बे को सलाम पेश किया। नायब सदर जमहूरियत सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि शदीद खतरे के दौरान कैप्टन स्मिट की गैर मामूली बहादुरी और हाजिर दिमागी तारीफ और तहसीन की मुस्तहिक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंतहाई संगीन खतरे और शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मिट ने दूसरों की जान बचाने के लिए बेपनाह हौसले और गैर मामूली अज़्म का मुजाहिरा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये मुसलसल आज भी जारी है। आज हम इस खसूसी सीरीज में इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि कैसे असम में ब्रह्मपुत्र दरिया पर बोगीबील पुल की तकमील से लोगों की जिंदगी में तब्दीली आई है।
1: ब्रह्मपुत्र दरिया पर तामीर शुदा बोगीबील दरिया शुमाली किनारे को जनूबी किनारे से जोड़ता है। साल 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इस पुल के इफ्तिताह के बाद आसाम के नकलो हमल के निजाम को नई तहरीक मिली। 2018 में इस पुल का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने इसे खित्ते के अवाम के लिए लाइफ लाइन से तावील किया था। आसाम से राकेश डोली की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असदुल्ला।
0: तालिबान के तर्जुमान जबीउल्ला मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में कम से कम 9 अफगान शहरियों की मौत हो गई जबकि 11 दीगर जख्मी हो गए। इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कल हुए हमलों में कुनार के शल्तान जिले और हेलमंद के गार्मसेर जिले में 3 मकान तबाह हो गए। ये ताजा हमले अफगानिस्तान के मुतअद्दिद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में तेजी आने के दौरान किए गए। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तीरानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरीसिनकल नोबल ने छोटी कश्ती के मुकाबले में आज चांदी का तमगा जीता। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का 21वीं सदी का काम करने का माहौल अवाम नवाज पहले से सरगर्म और अच्छी हुक्मरानी के उसूल पर मबनी है। वजीर आजम ने यूपीएससी के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत की। सरकार ने डीलरों के लिए शक्कर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है ताकि जखीरा अंदोजी की रोकथाम की जा सके और त्यौहार के दिनों में सारिफिन के लिए शक्कर की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फसाइल को मुअस्सर अंदाज से बरूए कार लाने की खातिर दिफाई बंदोबस्त के लिए मजबूत माली निजाम पर जोर दिया है। कॉमर्स और सनत महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के वज़राए तिजारत की मीटिंग में खुराक की यकीनी फराहमी और इश्तराक की जरूरत उजागर की है। और जापान में जारी एशिया खेलों में भारत ने कश्तीरानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance. Addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasizes integrated financial systems for defence management and resource utilization. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation.

0: March 2018. Odisha says that water projects being built in the upper reaches of the Mahanadi in Chhattisgarh affect the flow of water to Odisha during the non-monsoon season. Chhattisgarh, on the other hand, has maintained that it needs to use its share of water for irrigation, industrial and domestic needs. Both states have given a written assurance to the Central Water Commission that any decision taken by the Commission in the larger interest of both states will be acceptable to them. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
1: At least 9 Afghan civilians, including women and children, were killed and 11 others injured in Pakistani airstrikes on civilian homes in Afghanistan's Kunar and Helmand provinces. According to Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid, the strikes also destroyed 3 residences in Sultan district of Kunar and Garmsir district of Helmand. Condemning the latest strikes as an act of aggression, Mujahid accused Pakistan of using attacks on Afghanistan to divert attention from domestic political and economic problems. At the Asian Games 2026, today India opened its sailing medal account as Manu Francis and Prince Kurisinkal Noble secured silver in the men's skiff competition today, finishing behind China after 9 races. Indian compound archer Ganesh Maniratnam Tirumuru produced a commanding performance to win the men's individual bronze medal. Ganesh, who was a part of the gold-winning men's team yesterday, defeated Vietnam's Khong Duc Thanh in the bronze medal playoff after bowling out of individual gold contention with a semi-final loss. In squash, India settled for a bronze medal after losing 1-2 to Hong Kong in the women's team semi-final. India were assured of a medal in the Asian Games SIPAC Tokro men's quadrant competition after the team entered the semi-finals with a 2-1 win over Myanmar. India's overall tally has reached 63, including 10 gold, 22 silver and 31 bronze. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasises integrated financial systems for defence management and resource utilisation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers' meeting, reviews India-EU FTA progress. And in Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking overall tally to 63, including 10 gold. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंचों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
3: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव

0: तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
0: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति

0: के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के टेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
3: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
4: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
3: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल

0: हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
1: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में दो दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसे जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
0: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांश

0: श्री ओजस अनाया गुरदीप और बेबी की रतवाना जी लिखते हैं,
1: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
0: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का लिखा है।
0: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
0: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
1: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओ, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
0: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
1: श्रोताओ, मेघालय यानी मेघों का घर।
0: जी,
1: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
1: किसेन वानियांग एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
0: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
1: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है।
0: जी।
1: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देखकर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
0: श्रोताओ कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
1: और किसेन ने श्रोताओ दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था।
0: जी।
1: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
0: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
1: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
0: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
1: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया।
0: जी।
1: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
0: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि 4 बच्चों का जीवन बच गया।
1: श्रोताओं, किसेन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है।
0: जी।
1: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
0: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति, नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
1: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें और सुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
0: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
1: बहादुर बालक

0: किसेन वानियांग ने चार बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
1: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम तीन बातों को जरूर याद रखें।
1: जी,
0: तो पहली बात,
1: संकट में घबराए नहीं।
0: दूसरी बात,
1: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
0: और तीसरी बात,
1: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम।
1: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी।
1: जी,
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: है कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
5: ना ना ना नहीं,
4: अरे
5: इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
6: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
4: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
7: प्लीज मेघा,
8: दिखा दो।
4: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं।
9: चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
4: चलो चलो चलो चलो।
10: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
10: बहुत अच्छी।
11: मैडम मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
12: जी मैडम।
3: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
12: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
12: जी
4: मैडम, आप ही कहते हैं इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
4: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
12: लीजिए मैडम।
3: हाँ इसको खोलते हैं। हाँ अरे वाह, ये तो एक किताब है।
4: अरे किताब भी है।
3: हाँ शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
12: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
4: सैनिकों के बारे में? अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
12: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है, वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
12: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
3: वाह,
11: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
3: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
12: सैनिकों को तो बहादुर है हमारे सैनिक।
4: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
11: मुझे भी।
4: इसके बाद में नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
12: हाँ हाँ, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
4: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
3: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
4: रास्ता है?
3: मेघा क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
12: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
3: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदिनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
12: जी मैडम।
10: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
12: जी मैडम।
3: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
12: मैडम

0: बड़ी अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
1: क्या बात है।
2: अच्छा मिल्खा, ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
0: बताती हूँ। सुनो, परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
2: वाह।
1: अच्छा मेघा, क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
0: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
1: शाबाश।
0: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
2: मेघा, ऐसा क्या किया था उन्होंने?
0: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
3: ओ मैडम जी।
1: जी मोहन भैया, क्या बात है? आ जाइए।
3: मैडम जी, आपसे कोई मिलने आए, कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
1: ओ हाँ। मोहन भैया, आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
3: ठीक है जी।
1: बच्चों, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
0: जी मैडम।
1: मेघा, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
4: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
2: काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, फौज ही अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह,
5: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
6: मोहित, लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
1: चुप, एकदम शांत। बच्चों, ये है मेजर अशोक।
7: नमस्ते सर।
8: नमस्ते बच्चों।
1: ये भारतीय सेना में अफसर हैं। आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
0: जी मैडम।
8: भाई, आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
0: धन्यवाद सर।
8: सबसे पहले तो मेघा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
0: धन्यवाद सर।
8: हाँ, तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
0: सर, मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
8: बिल्कुल ठीक। बच्चों, मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों, परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे, और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
8: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
7: एक हिंदुस्तान।
8: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे ये बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
1: जी
0: मैं आपका और खासतौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
1: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
1: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
2: जय

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अरशद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

आदाबर्स, ये आकाशवाणी है। अब उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। आप हमारी नशरियात मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर सुन रहे हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी 3:05 पर हसबे मामूल खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप कुछ फिल्मी नगमे सुन सकेंगे और जनाब डॉक्टर निसार अहमद फारूकी का लिखा फीचर हजरत निजामुद्दीन औलिया 3:30 पर नशर किया जाएगा।

0: तो सामीन, ये था हमारे यहां से आज शाम 5 बजे तक नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सामीन, 3:55 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुदम्मर से खबरें सुनिए। कॉमर्स और सेहत महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के वज़राए तजारत की मीटिंग में खुराक की यकीनी फराहमी और इश्तराक की जरूरत उजागर की है। उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तजारत के समझौते की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वसाइल को मुअसर अंदाज से बरूए कार लाने की खातिर दिफाई बंदोबस्त के लिए मरबूत माली निजाम पर जोर दिया है। पोलैंड ने भारत के साथ मजीद मुस्तहकम और मजबूत इक्तसादी व तजारती ताल्लुकात कायम करने पर जोर दिया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेमंत सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में 9 आम शहरी मारे गए हैं और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्ती रानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। भारत के तमगों की मजमूई तादाद 62 हो गई है, जिसमें सोने के 10 तमगे शामिल हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने खुराक की यकीनी फराहमी के लिए खुराक को आलाए कार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ खबरदार किया है। तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने यह बात अमरीका के मिलवॉकी में G20 वज़राए तजारत की मीटिंग के इजलास के दौरान कही। जनाब गोयल ने उजागर किया कि मुश्तरका मकसद ये होना चाहिए कि खुराक की यकीनी फराहमी इस्तेहकाम और ताउन का जरिया बनी रहे। वजीर तजारत ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती माहदे पर दस्तखत और उसके नफाज की जानब पेशरफ का भी जायजा लिया। उन्होंने G20 वज़राए तजारत की मीटिंग के मौके पर तजारत और इकतसादी सिक्योरिटी के यूरोपीय कमिश्नर मैरूस सेवकोविक के साथ बातचीत की। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के 100 साल के सफर के दौरान नस्लें, हुकूमतें, टेक्नोलॉजी और निसाब तब्दील हुए हैं, लेकिन इस इदारे पर लोगों का एतमाद आज भी उसी तरह बरकरार है।

आज नई दिल्ली के भारत मंडप में यूपीएससी की सालाना तकरीबा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने सरकारी सर्विसेज में ऐसे नौजवानों को लाए जाने पर जोर दिया जो सरकारी ओहदों के हुसूल के बजाय अवाम की खिदमत के जज्बे से सरकारी मुलाजमत इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत काम के एक नए कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है जिसका बुनियादी उसूल अवाम नवाज, नहायत सरगर्म और अच्छा

की खिदमत के जज्बे से सरकारी मुलाजमत इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत काम के एक नए कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका बुनियादी उसूल अवाम नवाज, नहायत सरगर्म और अच्छी हुक्मरानी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत का मंत्र है नागरिक देव भवा, यानी शहरी ही सबसे अहम है और शहरियों की खिदमत सरकार की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस तर्ज हुक्मरानी की जरूरत है, उससे बड़ी हद तक यूपीएससी और रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इदारों के जरिए यकीनी बनाया जा सकेगा। अमला, अवामी शिकायात और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 बरस के दौरान कई अहम संग मील तय किए हैं और इसमें कई नई पहलू शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए की जाने वाली सरकारी तकर्रियों में इजाफा हुआ है, जबकि भर्ती के निजाम में शफाफियत भी बेहतर हुई है, जिसके नतीजे में आवाम का एतमाद मजीद मजबूत बनाया हुआ है। यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आज़ादी के बाद से मुल्क की नौजवान नस्लें मुल्क की खिदमत के ख्वाब लेकर कमीशन के पास आती रही हैं और यूपीएससी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि उम्मीदवारों को सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर परखा जाए। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने यूपीएससी के 100 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का और यादगारी डाक टिकट जारी किया और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया किताब का भी इजरा किया। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि जंगलात और जंगली हयात का तहफ़ फितरत के तवाज़ुन को बरकरार रखने और मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए काबिल कदर विरासत को महफूज रखने के लिए नहायत ज़रूरी है। जंगली हयात के हफ्ता 2026 के मौके पर अपने पैगाम में जनाब मोदी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो जंगली हयात के तहफ़ और उनके मस्कन की हिफाजत के लिए ताउन करें। वजीर आजम ने जोर दिया कि मरबूत मस्कन और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जानवरों की महफूज नकल व हरकत और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। वजीर आजम मोदी ने पिछली दहाई के दौरान जंगली हयात के तहफ़ भारत की हसूलियाबियों का जिक्र किया और प्रोजेक्ट चीता की कामयाबी को उजागर किया। जनाब मोदी ने शेरों के लिए बैन अवी इतिहाद IBCA के जरिए शेरों के तहफ़ के लिए आलमी इतिहाद को फ़रोग देने में भारत के रोल को उजागर किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कैप्टन स्मिथ माछर की तारीफ की और कहा कि मुल्क को उन पर बेहद फख्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर मुर्मू ने कहा कि मुश्किल वक्त में उनके गैर मामूली हौसले और हाजिर दिमागी ने सभी को मुतासर किया है। उन्होंने उनकी जल्द सेहतियाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ की और उनके गैर मामूली जज्बे को सलाम पेश किया। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्ण ने कहा कि शदीद खतरे के दौरान कैप्टन कि गैर मामूली बहादुरी और हाजिर दिमागी तारीफ और तहसीन की मुस्तहिक है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि इंतहाई संगीन खतरे और शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ माछर ने दूसरों की जान बचाने के लिए बेपनाह हौसले और गैर मामूली अज्म का मुजाहरा किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत मुसल्ह फौज को मजबूत करने पर खसूसी तवज्जो दे रही है। आज नई दिल्ली में दिफाई अकाउंट्स के दिन के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि अगर माशी निजाम को भी मजबूत कर दिया जाएगा तो इससे पूरा दिफाई बंदोबस्त और भी मुअसर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिफाई अकाउंट्स का महकमा पूरी वजारत दिफा को जोड़ता है और ये निजाम की बुनियाद है। जनाब सिंह ने महकमे से अपील की कि कौमी और अवामी दोनों सतह पर मेयारी ऑडिटिंग में बेहतरीन इकदाम को अपनाया जाए। जनाब सिंह ने बताया गुज़श्ता माली साल में अखराजात का इंदराज तकरीबन 100% रहा। उन्होंने मजीद कहा कि यह हौसलियाबी एक संग मील की हैसियत रखती है। सरकार ने डीलरों के लिए शकर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है और स्टॉक रखने की हद 1000 क्विंटल मुकर्रर की है। इसका इतलाक इस महीने की 15 तारीख से होगा और ये नवम्बर तक जारी रहेगी। सार्फिन के उमूर की वजारत ने कहा है कि सरकार ने शक्कर का स्टॉक रखने के जाब्तों पर नजरसानी की है ताकि ज़खीरा अंदोजी की रोकथाम की जा सके और त्यौहार के दिनों में सार्फिन के लिए शकर की बिना रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। पोलैंड ने भारत के साथ मजीद मुस्तहकम और मजबूत इक्तसादी व तजारती ताल्लुकात कायम करने पर जोर दिया है। पोलैंड के खजाना और इक्तसादियात के वजीर एंड्रेज दोमास्की ने भारत को आलमी सतह पर इक्तसादी रहनुमा और अहम शराकत दार करार दिया। जनाब दोमेस्की ने कहा कि पोलैंड भारत को एक बड़ी तेजी से तरक्की पजीर मईशत और जमहूरियत के तौर पर देखता है और वो भारत के साथ तवील मुद्दती तजारती ताल्लुकात कायम करने का ख्वाहां है। मिलवॉकी में G20 मुल्कों के वज़राए तजारत की मीटिंग के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए पोलैंड के वजीर ने कहा कि
पोलैंड चाहता

0: है कि वो यूरोपीय यूनियन और भारत एक दूसरे के मजीद करीबी साझेदार बने। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेजी से बदलते आलमी मंजरनामे में इकतसादी ताल्लुकात में ज्यादा पेशगोई के काबिल मुस्तहकम निज़ाम की अहमियत बढ़ती जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और पोलैंड के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के लिए काफी मौके हैं। सऊदी हुकाम ने ओमान से ताल्लुक रखने वाले उस को पायलट को गिरफ्तार कर लिया है जिसने दुबई से इसराइल के शहर तिलाबीब जाने वाली फलाई दुबई की परवाज के कैप्टन को चाकू मारकर जख्मी करने के बाद हवाई जहाज को गिराने की कोशिश की। ओमान के को पायलट ने जहाज के कैप्टन पर चाकू से हमला कर दिया। 2 मिनट में तैयारा तकरीबन 17,400 फीट नीचे आ गया। तहम मुसाफिरों और अमले के अरकान ने कॉकपिट में घुसकर हमलावर पर काबू पा लिया और जहाज पर कंट्रोल हासिल कर लिया। तालिबान के तर्जुमान जबीहुल्ला मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में कम से कम 9 अफगान शहरियों की मौत हो गई जबकि 11 दिगर जख्मी हो गए। इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तीरानी में चांदी का पहला तमगा जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबन ने छोटी कश्ती के मुकाबले में आज चांदी का तमगा जीता। इस तरह भारत के तमगों की मजमूई तादाद 62 हो गई है जिसमें सोने के 10 तमगे शामिल हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है जहां उसका मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। स्क्वैश में भारत को खवातीन की टीम मुकाबले में कांस्य का तमगा मिला। भारतीय टीम सेमीफाइनल में हांगकांग से 2-1 से हार गई। भारतीय तीरंदाज ज्ञानेश मणिरत्नम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मर्दों का इनफरादी कांस्य का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। कॉमर्स और सनअत महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के वज़राए तजारत की मीटिंग में खुराक की यकीनी फराहमी और इश्तराक की जरूरत उजागर की है। उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तजारत के समझौते की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वसायल को मौसर अंदाज से बरूए कार लाने की खातिर दिफाही बंदोबस्त के लिए मरबूत माली निजाम पर जोर दिया है। पोलैंड ने भारत के साथ मजीद मुस्तहकम और मजबूत इकतसादी व तजारती ताल्लुकात कायम करने पर जोर दिया। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में 9 आम शहरी मारे गए और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्ती रानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लेसाविनो पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद। आइए इस प्रोग्राम के तहत फिल्मी नगमे सुनते हैं। तमाम सामीन की खिदमत में अब्दुल्ला की जानिब से पुरखलूस आदाब।

अब लौट चलें। सामने इस फिल्म का ये टाइटल नगमा आपने सुना, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। आइए अब सोनू निगम और जसविंदर नरोला की आवाजों में हमराज फिल्म का दो गाना सुनते हैं।

सामिन, आइए प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं जुड़वा फिल्म का दुगाना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

सामिन इसी नगमे के साथ मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के नशरियात। सामिन अब पेश है डॉक्टर निसार अहमद फारूकी का लिखा फीचर हजरत निजामुद्दीन औलिया।

कितनी ही महफिलें सजी और दरहम बरहम हो गईं, कितनी रजमाराइयां हुईं जो तारीख के औराक में एक दास्तान पारी न बनकर दफन हो गईं। मगर मोहब्बत का पैगाम देने वाले औलिया अल्लाह के मैखाने मोहब्बत में आज भी वही कैफ सरमस्ती है, वही जौक सरशारी है। हजरत सुल्तानुल मशायख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक वही मैकदाए मारफत है जहां रूहानियत के प्यासों की भीड़ लगी रहती है, जो रंग व नस्ल और मजहब व मिल्लत की तफरीक के बगैर सारी इंसानियत की पनाहगाह है, जहां टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाता है, रिश्ते हुए जख्मों पर मरहम रखा जाता है, जहां सिर्फ प्रेम और मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया जाता है, जहां इल्म और इरफान की बारिश होती है। आइए आज उस बरगुजीदा इंसान की पाकीज़ा जिंदगी के चंद औराक पढ़कर उसकी याद ताजा करें।

0: तन की तरफ से बदायूं आया। वो बहुत सैर सियाहत कर चुका था और बहुत से दरवेशों की खानकाहों में हाजिर हुआ था। उसने मौलाना अलाउद्दीन उसूली को अपने तजर्बात और मुख्तलिफ बुजुर्गों की खानकाहों के हालात सुनाते हुए कहा,
1: मियां मुल्तान की तरफ एक बुजुर्ग हैं सुहरवर्दी सिलसिले के, उनके हजारों मुरीद हैं, बड़ी शानदार खानकाह है। उनका नाम हजरत बहाउद्दीन जकरिया है, लाखों रुपया नजराने का आता है, तिजारत भी होती है, उनके पास इतनी दौलत है कि मुल्तान का हाकिम भी जरूरत पड़ने पर उनसे कर्ज लेता है। मगर ऐसे अल्लाह वाले और जिक्र शगल में रहने वाले बुजुर्ग हैं कि उनके घर की कनीजें भी आटा पीसती जाती हैं और अल्लाह का नाम लेती जाती हैं। एक और बुजुर्ग चिश्तिया सिलसिले के हैं जिनका नाम शेख फरीदुद्दीन है, मगर सब उन्हें प्यार और अकीदत से बाबा फरीद कहते हैं। उनके यहां तो बस फकीरी ही फकीरी है, मस्जिद के पास एक कच्चे मकान में रहते हैं, तवक्कुल पर गुजारा है। कई कई वक्त उन्हें और उनके बच्चों को और खानकाह में रहने वाले दुर्वैशों को रोटी नहीं मिलती, मगर सबके सब शाकिर साबिर रहकर अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, मैं भी उनकी खिदमत में हाजिर हुआ था।
2: हजरत निजामुद्दीन औलिया भी ये गुफ्तगू सुन रहे थे। हजरत बाबा फरीद गंज शकर का तज़किरा सुनकर उनके दिल पर खास कैफियत तारी हुई और शेख फरीद का नाम उठते बैठते आपकी जबान पर रहने लगा।
0: बदायूं में इल्म की तहसील से फारिग हुए तो मजीद तकमील और तलाश माश के लिए दिल्ली का सफर किया।
1: दिल्ली आकर आप सराय नमक में उतरे, यहाँ के हालात का जायजा लेकर दोबारा बदायूं तशरीफ ले गए और अपनी वालिदा और बहन को भी साथ ले आए। उस वक्त दिल्ली में बड़े बड़े मदरसे कायम थे जिनमें मशहूर उलमा दर्स देते थे और उनसे पढ़ने के लिए वस्त एशिया तक से तालिबान इल्म खींचे आते थे। हजरत निजामुद्दीन शुरू से ही बहुत सहीन और नुक्तारस थे। उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा निगाह तहकीक से पढ़ा और इल्मी मसाइल में बात की तह तक पहुंचने का ऐसा खुदादाद मलका रखते थे कि अपने साथियों में वो बहास और महफिल शिकन के लकब से मशहूर हो गए थे। आपने दिल्ली में मौलाना शमसुल ममालिक, मौलाना कमालुद्दीन जाहिद, मौलाना बुरहानुद्दीन नसफी, मौलाना अमीनुद्दीन मुहद्दिस तबरेजी जैसे बाकमालों से मजीद 3-4 साल तक तालीम हासिल की।
0: उस वक्त सरकारी मुलाजमत में सबसे ज्यादा मुअज्जज ओहदा काजी का था जो कानून शरीयत के मुताबिक मुकदमात के फैसले किया करता था। हजरत निजामुद्दीन के जहन में किसी वक्त ये ख्याल आया कि अगर काजी का ओहदा मुझे मिल जाए तो आराम से गुजर औकात होगी।
1: कायदा ये था कि जब किसी बुजुर्ग से दुआ करानी होती थी तो उससे फातहा पढ़ने की दरखास्त करते थे। वो हाथ उठाकर अल्हम्दु पढ़ता था और दिली मकसद के पूरा होने की दुआ करता। हजरत निजामुद्दीन ने एक दिन शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल से फातहा पढ़ने की दरखास्त की। आपने पूछा किस मकसद के लिए? अर्ज किया, दुआ कीजिए कि मुझे काजी का ओहदा मिल जाए। शेख ने दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए और इतना फरमाया, तुम काजी बनकर क्या करोगे, कुछ और बनो।
2: उसी जमाने में हजरत की वालिदा माजदा बीमार हुई। बीमारी के जमाने में अच्छी तरह दवा और गिजा के लिए पैसे पास नहीं थे। आप मुख्तलिफ बुजुर्गों और शहीदों के मजारात पर हाजिर होकर अपनी वालिदा की सेहत के लिए दुआएं मांगते थे, मगर उनकी हालत रोज बरोज मायूस कुन होती गई। आपने अपनी मां को ऐसी शदीद बीमारी में देखा तो एक दिन ये फरमाया कि अम्मा आपके बाद क्या होगा, आप मुझे किस पर छोड़ जाएंगी। आपकी वालिदा ने, जो खुद भी बड़ी अल्लाह वाली खातून थी, ये अल्फाज अपने इकलौते और बेसहारा बेटे की जबान से सुने होंगे तो दिल पर क्या कयामत गुजर गई होगी, मगर उस वक्त जबान से कुछ ना कहा, बस ये फरमाया कि बेटा आज रात को तुम शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के घर सो रहना। आपने माँ के हुक्म की तामील की। नींद तो क्या आती, तमाम रात जिक्र करते रहे और दुआ मांगते रहे। सुबह के वक्त एक कनीज आई और उसने कहा कि अम्मा आपको बुला रही हैं। हजरत उसी वक्त गए। वालिदा ने फरमाया, निजामुद्दीन अपना दाहिना हाथ लाओ। आपने हाथ बढ़ाया तो वालिदा ने हाथ पकड़कर आसमान की तरफ देखा और फरमाया, या अल्लाह मैं निजाम को तेरे सुपुर्द करती हूँ। ये कहकर कलमा पढ़ा और इंतकाल फरमाया।
0: हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाया करते थे कि अगर इंतकाल के वक्त मेरी वालिदा ये कहती कि मैं तेरे लिए आसमान और जमीन के सारे

नमस्कार, पेशा एफएम रेनबो पर तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ किया। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। वस्तु और सेवा कर संग्रह में इस वर्ष सितंबर माह में कुल 14.7% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2,03,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। रक्षा मंत्री ने सैन्य नर्सिंग सेवा के 101वें स्थापना दिवस पर उन सभी नर्सिंग कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही वह राजपत्र अधिसूचना फर्जी है, जिसमें दावा किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सभी शनिवार सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। विभिन्न मंत्रालय

आज नई दिल्ली में कर्तव्य भवन के पास स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत एक दिन एक घंटा एक साथ श्रमदान गतिविधि का आयोजन कर रहा है। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। जापान एशियाई खेलों में भारत पाकिस्तान को हराकर हॉकी के फाइनल में पहुंचा और भारत ने एशियाई खेलों में नौकायान के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस किरुसिंकल नोबेल के ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ और आपके लिए जल्द हाजिर होगा हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: आकाशवाणी
1: नंदन वंदन अभिनंदन कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में आप सभी का स्वागत है।
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज आप सभी के समक्ष ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आपके लिए आपके शहर में आयोजित किया जा रहा है सेकेंड एडिशन ऑफ शेखो एफ इंडियन एयरफोर्स मैराथन, जिसको सिम के नाम से जाना जाता है, सिम 2026। और इस मैराथन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो हैं सेक्रेटरी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। आप हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सेखो इंडिया एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स मैराथन, और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी भी हैं। तो हम तहे दिल से सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी का। सतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गीतिका जी।
0: और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अपने जो श्रोता हैं उन तक पहुंचाने वाले हैं कि कैसे भले ही इस साल नहीं अगले साल से ही वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाल ही में आपने सुब्रतो कप इसका आयोजन किया, 65th एडिशन था, 18 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक सुब्रतो कप चला। जिस तरह से सुब्रतो कप आयोजित किया जा रहा है, और आकाशवाणी के माध्यम से भी हम नित्य प्रति अपने श्रोताओं को बताते हैं कि किस तरह से टीम्स खेल रही हैं, कौन सी टीम्स हैं जो जीत रही हैं, और किस तरह से जोश का माहौल वहां बना होता है मैदानों में, यहां हम आकाशवाणी के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। आप ये हमें बताएं कि इस साल का जो सुब्रतो कप आपने आयोजित किया, यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो हमेशा कार्यरत रहता है, स्पोर्ट्स को जन जन तक पहुंचाता है, किस तरह से रहा।

0: ये 65th एडिशन सुब्रतो कप का
1: 65th एडिशन बहुत ही रोमांचक था। जैसा आपने कहा 18 अगस्त को शुरू हुआ। हम ये फुटबॉल टूर्नामेंट तीन कैटेगरी में कराते हैं, अंडर 17 गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज एंड अंडर 15 बॉयज। तो अंडर 17 गर्ल्स 18 अगस्त को शुरू हुआ था दिल्ली में और उसका 27 अगस्त को समापन हुआ। झारखंड की टीम जो एक रिमोट लोकेशन जाती है गुमला, उन्होंने बहुत

0: एसी की टीम जीती। मैं सब श्रोतागणों को बताना चाहूंगा कि ये लगता एक महीने का हमारा टूर्नामेंट है, बट इसकी जो तैयारी है वो पिछले 6 से 7 महीने पहले शुरू हो जाती है। इसमें हर स्टेट की टीम पहले तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल के फाइनली स्टेट की एक टीम आती है, स्कूल की टीम, जो यहां परफॉर्म करती है। तो इस पूरे अगर आप देखें, ये स्प्रेड जो है इस टूर्नामेंट का वो एक महीने का नहीं, कम से कम 6 से 7 महीने का है। तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और हम एज ऑर्गेनाइजर तो हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, बहुत रोमांचक था
1: जी। कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ जब आप बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज होता है, ऊर्जाओं का एक्सचेंज होता है। और हमारे युवा भी, बच्चे भी चाहते हैं कल चलकर फोर्सेज ज्वाइन करेंगे, इंडियन एयरफोर्स में हम पायलट बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे। और इसी मुहिम के साथ इंडियन एयरफोर्स हमेशा कार्यरत रहता है, जैसे कि हमने कहा कि स्पोर्ट्स की दुनिया में तो बच्चे नाम कमा रहे हैं और हमारे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहीं ना कहीं हम फोर्सेज से ही सीखते हैं। अब बात करते हैं कि सीखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप कृपया करके हमें फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सिखों के बारे में जरूर बताएं। निश्चित रूप से उनका इस मैराथन से ताल्लुक जरूर है, आप कृपया करके हमें बताएं कि उनका जो योगदान रहा भारतीय वायुसेना, अगर उसकी बात की जाए, अतुलनीय रहा। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और आपके मुख से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपकी बात जन जन तक पहुंचे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो एक मिसाल है इंडियन एयरफोर्स के लिए, नहीं पूरे इंडिया के यूथ के लिए। वो बहुत ही यंग थे, 25-26 साल के थे जब उन्होंने 1971 की वॉर में हमारे दुश्मन के जहाजों को बड़ी बहादुरी से गिराया, उनसे लड़ाई करी, मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र मिला। वो अकेले ऐसे ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स के जिनको परमवीर चक्र से वो सम्मानित हैं। तो यही एक उनको यूनिक चीज बनाती है जिसके इनके नाम से और इनके जो इनकी पदवी है उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी याद में हमने ये सीखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन शुरू करी।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। अगर हम सेकंड एडिशन की बात करें, और सेकंड एडिशन अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी उम्मीद, और कहते हैं कि जब हम अंतिम छोर में होते हैं ना तो हम अगले की तैयारी करना शुरू करते हैं। अगर हम रेट्रोस्पेक्शन करें पहले एडिशन का, तो पहला एडिशन उसकी क्या खास बात थी और इस एडिशन में क्या कुछ खास होने वाला है, आपके माध्यम से जानना चाहते हैं।
0: पहला एडिशन हमारा 2 नवंबर 2025 को हुआ था, दिल्ली मेन सेंटर था रेस के लिए, पर हमारे बाकी जो भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशंस हैं उनमें 45 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री, ये मैराथन ऑर्गेनाइज कराई गई थी सेम डेट पे सेम टाइम पे। और तो रनर्स की जो टोटल अगर आप नंबर्स बोलें, दिल्ली में वो 12,000 थे और ऑल ओवर इंडिया को अगर हम पूरा समअप करें तो अराउंड 45,000 पीपल रैन ऑन दैट डे।
1: क्या बात है, क्या बात है। और उसी उम्मीद को आप आगे, यानी कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना, उसे कहते हैं ना कि हम मिसाल कायम करते हैं, फिर उस जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं फिर सोचते हैं इससे बेहतरीन आगे और किया जाएगा। लाइफ का यही दस्तूर है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। अगर अब सेकेंड एडिशन की बात की जाए, सेकेंड एडिशन ऑफ सीखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन, जिसे हम सिम के नाम से भी जानते हैं, इस एडिशन में क्या कुछ खास है, अपने आप में परिपूर्ण है, मैराथन की बात हो रही है यहां पर, लेकिन एक सवाल और मन में मेरे जहन में आता है सेकंड एडिशन के बारे में बात करने से पहले, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है जो ये मैराथन हर साल कराई जा रही है।
0: ये कंसेप्ट जो था हमारे प्रेजेंट चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वो अपने आप में एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, तो उनका विजन था कि सीखो साहब बहुत यंग थे जब उन्होंने शहादत दी, तो वो चाहते कि जो एयरफोर्स का यूथ है और इंडिया का यूथ है वो कोलैबोरेट करें, इसलिए एयरफोर्स मैराथन लेके आए जिसमें डिफेंस पर्सनल भी भागते हैं और सिविलियंस भी भागते हैं। तो एक उद्देश्य है कि फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ इसको मूव करना है। एयरफोर्स में तो के एक सिस्टम है जहां पे आपको फिटनेस पैरामाउंट है, पर हम चाहते हैं कि ये अमेलगमेट करें हम सिविलियंस के साथ भी, एंड इसको एक यूनिक प्लेटफॉर्म देके इसको आगे बढ़ाएं
1: जी। और कहीं ना कहीं एक सिविलियन लाइफ के साथ कहते हैं ना कम्युनिकेशन, संवाद, मुझे लगता है शायद इस मैराथन के माध्यम से आसानी से हो जाता होगा।
0: बहुत लोग जुड़ते हैं और जो जुड़ जाते हैं वो सिर्फ जुड़ के ही रहना चाहते हैं
1: जी। बहुत बढ़िया। अब जब सेकंड एडिशन की हम बात कर रहे हैं सिम के, तो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किन किन राज्यों में हो रहा है।

0: है इसके बारे में भी हमें जानकारी दें।
1: जैसे कि मैंने बताया, सिम 4 अक्टूबर 2026 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली एडिशन होगा, और हमने कुछ मेजर सिटीज हैं अक्रॉस इंडिया जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जहां पे डिफेंस पर्सनल भी और सिविलियंस भी भागे हैं। अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट करें तो नॉर्थ में चंडीगढ़ मेजर सिटी है, ईस्ट में गुवाहाटी है, अगर आप वेस्ट साइड आए तो मुंबई और जोधपुर है, आप सेंट्रल साइड आए तो ग्वालियर है, और अगर डाउन साउथ इंडिया में जाएं तो बेंगलुरु एंड तिरुवनंतपुरम है। ये हमारे मेजर लोकेशंस हैं जहां रन होगा, बट ये यहां तक लिमिटेड नहीं है, और बड़े और छोटे एयरफोर्स स्टेशन में भी ये रन साइमल्टेनियसली कंडक्ट होगा, दिल्ली प्लस और अक्रॉस इंडिया, जैसा हमने पिछली बार किया था।
0: बहुत खूब। 8 अक्टूबर हम सभी के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए, ना केवल वायु सेना के लिए, हमारे लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मैराथन उसका प्री सेलिब्रेशन है?
1: आप बिल्कुल कह सकते हैं, हमारा एयरफोर्स डे है जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इस बार हमारा 94th एयरफोर्स डे है, एंड एयरफोर्स डे वीक इज गोइंग ऑन, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन है।
0: बहुत खूब, आपने बोला 94th हम एयरफोर्स डे मनाने जा रहे हैं, तो इस मैराथन से हमारी क्या उम्मीदें हैं?
1: देखिए, पिछली बार जैसा मैंने पहले भी कहा कि पिछली बार हमारे 45,000 रनर थे, तो इस बार हमें उम्मीद है कि नंबर डबल होगा, और हम जो 94th का फिगर है, 94th एयरफोर्स डे, हम उस नंबर को पाना चाहेंगे।
0: जब हौसले बुलंद हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, और भारतीय वायुसेना इसी बात की मिसाल है, और इस मिसाल को कायम कर रही है। सेकेंड एडिशन ऑफ सेको इंडिया एयरफोर्स मैराथन 2026, यानी कि सिम 2026 का आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को। विंग्स ऑफ करेज, जी, जब हमारे ये जाबाज हवा में उड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय धरती से परचम लहराते हैं जीत का।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कामयाल और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो आपको जानकारी दे रहे हैं सेकंड एडिशन ऑफ सिखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026, जिसे आप सिम 2026 के नाम से भी पुकार सकते हैं। और जब जब आप पुकारेंगे तब तक भारतीय वायुसेना आपके साथ होगी और आपके लिए निरंतर अविरल बहती रहती है जैसे कि हवा, जैसे कि परिंदे। और भारतीय वायुसेना की ये मुहिम आपके लिए ही है। बस हम जानना चाहते हैं आपसे सतेंद्र जी कि बहुत से लोग सुनने के बाद आतुर हो रहे होंगे कि काश हम भी, क्योंकि सिविलियंस के लिए ये भी मैराथन खुली हुई है, हम भी कैसे इसका हिस्सा बने। तो कैसे हिस्सा बन सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, आप हमारा मार्गदर्शन करें।
1: ये जो मैराथन की रजिस्ट्रेशन थी वो हमारी वेबसाइट है sekhoifmarathon.in, आपको उस पे साइट पे जाके रजिस्टर करना होता है। वो हर साल ये साइट कांस्टेंट यही रहेगी, लास्ट ईयर भी यही थी, कंटिन्यू रहेगी। अगर इस बार एडिशन की बात की जाए सिम 2026 की, तो 1 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी और 15 सितंबर को ये रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। तो हमें 10 दिन चाहिए होता है इस इवेंट को कराने के लिए, तो 15 सितंबर को हमने बंद करके अब वी आर फोकसिंग ऑन टू कंडक्ट द इवेंट, प्रिपरेशन ऑफ द इवेंट।
0: जी जी, तो कहते हैं कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह फर्स्ट एडिशन सफल रहा, हम कामना करते हैं कि सेकंड एडिशन जो हमारे उद्देश्य हैं वो पूर्ण हो। और कहते हैं कि जब हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिंदगी यानी कि भारतीय वायुसेना आपको फिर मौका देगी, थर्ड एडिशन में आप जरूर हिस्सा ले पाएंगे। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि आप साइट पर जाकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी अर्जित कर सकते हैं, तो अगले साल जब आप हिस्सा बनना चाहें तो आप साइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन कर अगले एडिशन का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जानकारी हमेशा काम आती है, आज नहीं तो कल जरूर। अब अगर बात की जाए वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड एडिशन में, वो भी बहुत उत्सुक होंगे कि हम इस महाआयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए वहां फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, किस तरह से हम रुक करेंगे, तमाम बातें जहन में चलती हैं। उन लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: हाँ, मैं आप जो करंट सिचुएशन है मैं वहां से शुरू करता हूँ। आज हमारा एक्सपो स्टार्ट हो गया है मैराथन का, जो सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा तेजस ग्राउंड रेस कोर्स में, और कल भी होगा 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो जिनकी बिप कलेक्शन और बाकी जो हमारे गुडी बैग्स हैं वो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। रेस डे जो 4 अक्टूबर को है, उसमें एक तो इसमें यूनिक है, हमने दिल्ली मेट्रो से टाई अप किया हुआ है, तो सबको हर जो जितने भी रनर्स आ रहे हैं उनको हम एक फ्री टिकट दे रहे हैं दिल्ली मेट्रो की। वो येलो लाइन, वायलेट लाइन और ब्लू लाइन, इन तीनों को उसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच सकते हैं जहां पे इवेंट है। 4:30 फर्स्ट फ्लैग ऑफ 5:30 है, तो 4:30 के आसपास आप वहां पहुंच जाएं। और एज फार एज फैसिलिटीज कंसर्न, हम जैसे आप एंटर करेंगे आपके लिए एसी वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, सेंटर आपके लिए सारे हाइड्रेशन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल है। एन रूट आपको हाइड्रेशन, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार एंड अ प्रॉपर मेडिकल कवरेज थ्रू आउट द रूट एंड विद इन द एरिना ऑफ JLN विल बी अवेलेबल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स।
0: जी, एक्सपो में और कुछ क्या खास होने वाला है? क्योंकि जब हम एक्सपो जाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि शायद हम भारतीय वायुसेना से और भी ज्यादा रूबरू हो पाएंगे, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी अर्जित करने के लिए हम उस गंतव्य तक जरूर पहुंचते हैं। तो वो लोग जो एक्सपो का हिस्सा बनेंगे वो निश्चित रूप से मैराथन के बारे में जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या और कुछ खास है जिसको देखने के लिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहां पहुंचे?
1: बिल्कुल, एक्सपो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर लास्ट टाइम गए हमने एक ओपन एरिया में रखा था, पर इस बार हमने एक ह्यूज स्ट्रक्चर, जर्मन टेंट्स लगाए हैं, एयर कंडीशनड है वो। अगर मैं आपको फ्लो के थ्रू ले जाऊं, आप जैसे एंटर करते हैं तो एक वॉल लगी हुई है जहां पे सारे पार्टिसिपेंट जो इस बार पार्टिसिपेट करें, एक एक इंडिविजुअल का नाम वहां लिखा हुआ है, तो वहां चेक कर सकते हैं आई एम पार्ट ऑफ दैट इवेंट और नॉट।

0: अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं, हमारा एयरफोर्स का स्टॉल भी है, हमारी बैंड की परफॉर्मेंस लाइव है और क्राउड बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक है। मैं अभी 2 घंटे पहले की बात बताता हूँ, लोग इंडियन एयरफोर्स की ट्यून्स पे वहां डांस कर रहे थे, देवर एंजॉयिंग द फुल फ्लो। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस है, यू मस्ट गो। दूसरा, एक इंडियन एयरफोर्स फैसिलिटी दे रही है, तेजस ग्राउंड इज जस्ट नियर टू लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन, जहां से हम बस की फैसिलिटी दे रहे हैं। जो लोग अपना मेट्रो से आ रहे हैं तो वो बस से हम कम्यूट कराएंगे, उनको ड्रॉप करेंगे मेट्रो स्टेशन से टू द वेन्यू एंड बैक। तो इस फैसिलिटी को जरूर अवेल करें
1: जी। एक प्रश्न और यहाँ उठता है कि क्या ये एक्सपो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए ही खुला हुआ है या आम जनमानस जो सेकेंड एडिशन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं पर उनके मन में जिज्ञासा है कि चलो तेजस ग्राउंड चलते हैं और इस एक्सपो के माध्यम से ज्यादा जानकारी अर्जित करते हैं, क्या वो लोग भी वहां पहुंच सकते हैं?
0: इन एयरफोर्स का दिल बहुत बड़ा है, हम ओपन अपने दोनों ओपन हैंड से सबको वेलकम करते हैं।
1: आसमान जितना बड़ा है,
0: आसमान स्पेस तक हम आउटरीच करते हैं, तो आए और इस एक्सपीरियंस का मजा लें।
1: वाह, क्या बात है। तो आपके लिए ये बहुत ही प्यारी सुखद जानकारी, भले ही आप सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 इसका हिस्सा ना बन पाए हो, समय पर रजिस्ट्रेशन ना कर पाए हो, लेकिन जैसा कि विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना का दिल आसमान से भी कहीं ज्यादा बड़ा, कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, जिसका कोई अंत नहीं वो अंतहीन है, वो है भारतीय वायुसेना। तो दिल बहुत बड़ा है, आप जाएं और कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा जरूर बनेगी, जरूर उठेगी कि काश मैं भी भारतीय वायुसेना में होता, या काश मेरे बच्चे भी कल भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विसेज दें। और ये आचार व्यवहार का एक सुखद माध्यम है, जिससे मोहब्बत की जाती है उससे मिलने जरूर जाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। आप तेजस ग्राउंड इस एक्सपो को देखने के लिए जरूर पहुंचें। और आप सभी के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए ये नगमा हमारी ओर से।

0: ती कम्युनिटीन गंगमा दियंग तो इन्वॉल्व छना आखिरकार चीज पो गंगमा इंसान इस बचिन गता मिंदा रे रेस बचिन गंगमा महस हाई लेवल के चेंज शा जरूरी मेन की गते रेन रे दरे एरी दिए हिसाब पे कदु खोए जैसे कि यारंगा गोखरी का गता एनर्जी जरे सबसे गता अंदर एनर्जी कंजम्पशन पो गता माने कीमो चीज बन गता गा छक्से छक्से चीज इन नंगा दिस एनर्जी के लेने दुक चाहे नाता ओटी फियाइन नाता जान सोलचे फियाइन नाता ग्रंगमे फियाइन एसी या चाहे नाती डोनमे फिया हीटर यो छोटे से छोटे हर चीज जो आजकल रोजमर्रा नाती जिंदगी अनुपाल में दोन गामा एनर्जी इन जो है तंगा दिस गोकरी खाते एनर्जी से बचे रिज मोज दे दी का कि नाता छा तना गेरी कमरे अनु गेरी बिजली और ऑफ से चाचा यारा जरूरत में तनेरस यारी गा एनर्जी ची शीन पंखे की दो बंद बस चाचा हीटर छीन ना का तो यारा गा दी जरूरत का तो मेना दो आम बन बस चाचा दो ने हम बो गता कुछ रिन्यूएबल एनर्जीज बात जो दो गता डुलन रुक चा ओके जैसे कि गते सोलर एनर्जी दो गते इस्तेमाल बनाएंगे अंचा फिर भी हम खोया गता रिलीजियसली यूज बचा गते इस माना गचुक ची बना का तो जितना हमें जरूरत है उतना हम यूज करें बाकी जो है हम सेव रखें जिससे हम सस्टेनेबल वही कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमी ब्याज चलो यारा छुई ना का तो गार यारे छुई ना का तो यारा जरूरत यारे छू इस्तेमाल बचा बाकी यारे छू मामो फॉर्म ही पहुंचा दिया ना सिर्फ दिया सकमा आता महदूद मिलू छा ये ट्रांसपोर्टेशन एंड समथिंग एनर्जी वेस्ट जैसे कि गतंग मिंदा चिची की कम से कम 5 किलोमीटर खुरान सा डुलंदो हालांकि खुए गाड़ी जगह नो मिंदा 5 नफर को सीटी का खुरी छाया छा ना का तो एनर्जी चाहे पेट्रोल इन चाहे डीजल इन जो भी होगा कंजम्पशन पर ज्यादा बेनियत दे फिर कार पुलिंग जरबान साइकिल जरबान हर चीज है ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दो दो चीज इस्तेमाल बचा जिससे हो सके की एनवायरमेंट बचे छेत गति रिसोर्स बचे छेत जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे साथ तरक्की होगा तो हम आने वाले फ्यूचर के लिए भी कुछ सोचे नजर भी कोशिश
1: मिशन लाइफ हम COP26 2021 आइडिया प्रेजेंट बस छा इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन कंजर्वेशन असर इम्पैक्ट पोचांग इंटरनेशनली
0: बिल्कुल जो दियो गता COP26 ही दिन ध्यानो गता यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज के हिसाब पे का कोइस एक्चुअल 2021 एनालिस चीज जर माने चीज जर ना का तो गता गारी ना का तो इंडस्ट्रियलाइजेशन माने ज्यादा क्षेत्र में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन गति चम से गति सीटे जितने भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहा है बेशक अल्टीमेटली वो सब एक गति इंडस्ट्री से आना चाहिए इंडस्ट्री से अनु धन से आना चम से गता कार्बन प्रोड्यूस और देफिया गता हर चीज लगातार मद्देनजर रखते हुए कौन जिसकी डिकार्बनाइजेशन जरे कार्बन पर थोड़ा सा कम बचा अधे जती चीज पर एक हरियाणा स्टार्ट हो जरूर जुआ देखना कौन दिया कुरियन मेन जिसकी पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा छोटा मी सही हिस्सा गाते आती अनुक छुपो गति इन्वायरमेंट लगातार लज बचे जरे जैसे कि गता गति लद्दाख अनुआ गता दरे यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की गाँव साफ चर्चा या गति गाँव है चाहे इंडस्ट्रीज योजना का तो दे इंडस्ट्रीज लेवल पोखरी क्लीन एनर्जी इस्तेमाल बचा या दो नेरी रिसोर्स पोतना का तो गसुक चुका उतना लिमिटेड रिसोर्स गति इस्तेमाल बचा कंजम्पशन पो गता गति हिसाब ची कलें चाहे एक्स्ट्रा लेन मिलें चाहे देफ या गति दर यूटी लद्दाख है गता दिचिक 2026 में जैसे कि गति यूल लजना का तो स्वच्छ गाँव सुरक्षित हवा और पानी को सुरक्षित रखने के लिए एक स्वच्छ गांव का होना बहुत जरूरी है जरे दियू गाती दरे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जुआ दो मेन मांगाती हर चीज जो है गति COP26 यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज 2021 को पूरा अच्छी तरह से गति दरे लदा है क्लाइमेट चेंज चेजर में प्लांटेशन ज्यादा बढ़ रहा है क्लीनेस ड्राइव ज्यादा चल रहा है दिया इनको लेके लास्ट ईयर 2025 जमीयत उल उलमा इस्ना शेरे सदर जनाब शेख नजरुल महती ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उठाया जो है क्योंकि मैं उस बहसियत रिप्रेजेंटेटिव अल हिमालय ग्रीन मिशन और रिसर्च सेंटर क्योंकि हम भी उस कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था उसको लेके हमारे गति यूटी लेवल का चाहे एल जी बोला शेख साहब सब उन लोगों को इसको एंडोर्स करके आगे ले गया ताकि गति लेवल पे लोग हमने 1.27 लाख प्लांटेशन लगाया उनमें से

0: अवेयरनेस जो है लोगों को अवेयर कर देता है, बाकी अवेयर हर किसी को हो जाता है, एकदम नॉलेज मिल जाता है, हाँ जी ये क्या न्यूज़ पे आ गया, रेडियो पे, बट अल्टीमेटली वो चीज़ ग्राउंड पे देखना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि उसमें एक मेजरमेंट यानी गचुक बसे ये सब कुछ करना चाहिए, जैसे कि आपने बोला वाटर यूज, वाटर को आपको कैसे पता चले कि यहाँ पे कितना वाटर यूज हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक रखा कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल कि हर डेली कितने परसेंट कितना पानी यूज करता है, जैसे कि उसका पीना होगा, उसका खाना, कपड़ा वपड़ा धोने, एक इंडिविजुअल गाड़ी धोने तक, ये एक पूरा डाटा आ जाता है जो है। उसके बाद हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आता है, तो सेम टूरिस्ट वाला का भी कितना हमारे पास गचुओं के इस्तेमाल से इम्पैक्ट पड़ता है। सेम थिंग आपका वाटर के बाद एनर्जी पे आता है कि एक इंडिविजुअल कितना एनर्जी कंजम करता है, तो एक इस तरह की एक डाटा जो है हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि एक इंडिविजुअल के बाद एक हाउस होल्ड कितना एनर्जी कंजम करता है, उनमें से वेस्ट कितना होता है। सेम इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट का भी, एक इंडिविजुअल कितना कचरा जो है वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह द्यून गंगमा अधिस जति का गतिस ठीक ठाक तरीके का गतिस मैनेज बसे दो गतिस जैसे कि कस बिल्कुल एक डैशबोर्ड चेंज हुआ नतीजा है कि वो एक आपके इंस्टीट्यूशनल वे से एक स्कूल में एक डैशबोर्ड होना चाहिए। डैशबोर्ड पे आपको पता चलेगा कि आज जो है कितने परसेंट आपका बिजली यूज हुआ है, पानी हुआ था, वो एक स्कूल में भी आप बोल सकते कि मेरे स्कूल में आज इतने लीटर हमने पानी जो है वो टंकी में डाला था, मेरे स्कूल में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से मेरे यहाँ पे इतने पानी आ गया, तो वो आप कर सकते हैं कि इंडिविजुअल पे डिवाइड कर सकता है। तो इसी तरह से आपका वेस्ट आपके पास इतना आ रहा है, तो 100 बच्चे पे डिवाइड करो तो एक गचुका भी गुजरे। ऐसा डोज में सिर्फ आपकी स्कूल्स में होना चाहिए, रेस्टोरेंट में होना चाहिए, आपकी होटल्स में होना चाहिए, जहां जहां आपका है। तो इसीलिए सर एक हमारे लद्दाख में मिशन चल रहा है सर, मिशल खुरयुक सर, वो हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड ने किया है, तो उसकी अभी मेरे रिगजिन जी उससे भी बात हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी तक 300 स्कूल लद्दाख में एमओयू साइन किया हुआ है सर। जितने भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पे उन्होंने एमओयू साइन किया है, और मिशन खुरयुक नाम का वो काम भी चला रहा है, जिससे जितने भी होगा आपका वेस्ट मटेरियल हो ये सबों को सिग्रीगेट कैसे करना है, जैसे कि प्लास्टिक को अलग से, शीशे को अलग से, कपड़े को अलग से, तो इस तरह से जो है अभी हमारे यहाँ पे काम होना शुरू हो गया।
1: मर्सी जो गुलाम साहब, तो मतलब दरे जो मिशन लाइफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव शुरू सोम या इंटरनेशनल लेवल की मिशन लाइफ चीज सोचो लद्दाख ना करगिल मद्देनजर खसूस इन्वायरमेंट पर पता फ्रिजाइल रिसोर्स जो एल्टीट्यूड पर माना छो हाई और बिल्कुल चैलेंज इन जो माता मिशन लाइफ पो इम्प्लीमेंट बचाओ चैलेंज इन हमें या मद्देनजर गचू का दू फायदा माने जो और नती लोकल कम्युनिटीज न विजिटर कंट्रीब्यूट बन चाहें।
0: बेशक सर, ये सबसे जरूरी क्योंकि हिमालयन रीजन एक टाइम पे वाटर बॉडीज के लिए सबसे अच्छे माने जाते थे, हमारे पास बहुत सारे ग्लेशियर्स थे, तो ग्लेशियर्स होने के साथ साथ वो ग्लेशियर जो है हर साल अच्छा खासा हमारा रिचार्ज भी होता था, मतलब कम से कम हमारे जो मतदा हम बोलते थे 4-5 फुट वो आता था, वो हमारे लिए रिचार्ज होता था और ग्लोबल वार्मिंग का कोई असर हमारे पर नहीं पड़ा था। इवन कि क्लाइमेट चेंज बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग का अब असर पड़ गया सर। लद्दाख का अभी जितना भी आपने देख रहा है कि हमारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होना बहुत शुरू हो गया है, और मेल्ट होने के बाद जो है छुमिक जर दे छुमिक नदी हर जगह पे आता है, छुमिक बंस छुमिक बंस है मल्ला पॉइंट के हर किसी के लिए कुआ एक सोर्स नरगोज दे जो आता है जहां से हमारे उसके लिए पानी आए। तो हमारे लिए सबसे पहला लद्दाख जो है इस वक्त सबसे चैलेंजिंग फेज पे इन्वायरमेंट को लेके दे फिया एक फ्रजाइल इन्वायरमेंट है, हमारे पास हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, हमारा वाटर सिक्योरिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, इसी की वजह से सिर्फ ये वाटर की ही वजह से हमारे एग्रीकल्चर पे असर पड़ रहा है, हमारी ग्रीनरी पे असर पड़ रहा है, हमारे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल हर चीज पे जो है हमारे लद्दाख का असर पड़ रहा है, वो सिर्फ छोटे से पानी की वजह से, उसका भी बहुत सारे

0: असर देखने को मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि हम जो है अभी सीधा जो एक लद्दाख जो एक ट्रांजिशन फेज पे आया है कि हम ज्यादातर कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहा है। हमारा इकोनॉमी जो है वो सिर्फ सर्विस सेक्टर या हम मैन्युफैक्चर सेक्टर में बहुत जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में भी बहुत असर पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सर, जो पुराना इरिगेशन कनाल्स है वो सब अब पूरा खत्म हो गया।
1: बिल्कुल
0: जहां जहां पे इरिगेशन कनाल्स होते थे आज वहां पर रोड बन रहा है,
1: पानी ही नहीं है।
0: पानी ही नहीं रोड बन रहा है। तो रोड बनने के बाद जो है हमारे पास जो है जहां जहां हमारा ग्रीनरी कम होगा तो ऑब्वियसली हमारा वाटर साइकिल में भी बहुत
1: असर
0: सारे असर
1: पड़ने
0: पड़ता है।
1: लगा।
0: अगर आप लोग हम बोलते हैं ना साइंस और साइंटिफिक तरीके से, जहां से आपका ग्रीनरी ज्यादा होता है वहां पे आपका वाटर साइकिल भी अच्छा होता
1: ज्यादा
0: है
1: होता है
0: और वहां पे प्रेसिपिटेशन भी अच्छा होता है। और आप हमारे एक आपका नहीं, ये तो एक लेमेन और आम आदमी गति युल दुखन सा खोई
1: प्रॉब्लम है।
0: प्रोड्यू हाउ कि गता लो फलान चीजों से छुका
1: शु
0: में
1: कम
0: आते
1: सोस
0: हो
1: बिल्कुल
0: चेयर बना गता गति लेवल पे का वाटर साइकिल पॉन्ग कम सो ग्लोबल वार्मिंग पॉन्ग हर जाना का तो गता छी दिया सर पूछे नहीं जुया
1: मसी जो होलान साहब चा नता स्पेरा हम न मोमो सो जो ए मिशी बारे रे दमो से मोल जो खसपा बसे चा ना त आखरी के जो यार दया मोल छ कि गति स्कूल्स जवान लोकल बॉडीज सुन हाँ अति इंस्टीट्यूशंस आ जैसे ने अनु अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जहाँ चाहना कम्युनिटीज गंगवा लोक से गते दी मिशन लाइफ पे का गसो अता कंट्रीब्यूट बाइन चाहिए जो पहला दी जो चाहना यंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज गस लाइक क्रिएट छचा इन दी मिशन लाइफ पर बस आई
0: कैसे बख्शी जो सबसे पहला यार जिसकी गता गति गचुक डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से गति आधे इंस्टीट्यूशन उन्हें इन्वॉल्वमेंट ना गता दे अनुखोंगी लखत जो मंगता मन जरूरी है क्योंकि गता सबसे पहले ने इंस्टीट्यूशन गता जरूरी सुंदर जो सबसे पहला गता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन निकल गते शुरू बना गया तो सबसे पहला गता स्कूल्स हो स्कूल्स जो है ना गता घर चीज ही ना तो सबसे बुनियाद पर गति स्कूल
1: स्कूल
0: इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
1: बिल्कुल
0: दरे स्कूल सरानवा यहाँ पहला जैस की मिशन खुरियल जरे कौन एमओयू साइन कर सो दिया चुक लांग अति दरे हर स्कूल यानो सबसे पहले फ्रूनला अवेयरनेस है जरूरी। दूसरा अवेयरनेस के साथ साथ एक्शन कौन इस आधे चीज सुनला
1: प्रैक्टिकली बस
0: प्रैक्टिकल
1: इस्तेमाल
0: मतलब
1: जो
0: जिसे हाँ
1: मशीन
0: जिसे हम R3 भी कहते हैं। R3 मतलब वो रीयूज रिपेयर एंड रिसाइकल
1: रिसाइकल
0: सेक्शन जो है अदोन लजर मना का तो गचुक बस को दोबारा इस्तेमाल बची गचुक बस दो चुचीन या दो ने अबो को यंग को ला से आनो गातेस स्टेचिंग
1: क्योंकि
0: जरे दे भी स्कूल आनो गाता इको क्लब यों मना जरूरी किचन गार्डन गाती ऑलमोस्ट हर जगह
1: हाँ
0: खत्म
1: स्कूल
0: सो
1: है तो इंट्रोड्यूस
0: दो दो गाता स्कूल इंट्रोड्यूस चार को शादो जो किचन गार्डन छोटा सा एक तो फ्रूनला प्लांट से बारे में नॉलेज आ चाहे तीसरी बात जो है खुआ एक थोड़ा सा ग्रोथ हो दो इवन के रेस्टोरेंट होटल वाला जो है खुआ खुंती लेवल पे का कीचड़ गार्डन ची क्यों मारो दो ना सिग्रीगेट नती चाम से वेस्ट मटेरियल उड़ना का तो दोनों मतलब
1: खामन
0: अलग
1: बस
0: अलग वो
1: हो
0: खामा ना सिग्रीगेट बचा होटल पर खुदे सिग्रीगेट बचा दो ना हर चीज यानो। दूसरी बात नतांगा दिया नो मिशन लाइव यानो चेंजूंगा थी हद से ज्यादा हमारे खाना भी वेस्ट हो रहा है वो भी एक मिशन लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि हम 20 बंदे के लिए खाना बनाना है 20 बंदा कितना खाएगा उसकी जगह पे हमारा जो है कम से कम 50 बंदे का खाना हमारे से वेस्ट होता है क्योंकि अलग अलग वाला भी
1: नानी
0: बन
1: बाक्सन इसे जाने
0: बिल्कुल
1: रही बिल्कुल
0: ये वाला भी एक बहुत बड़ा आता है। जब ये एक तरफ से फूड सिक्योरिटी का भी एक हिस्सा है वो अलग टॉपिक है मगर मिशन लाइफ का वो भी एक हिस्सा है जो वो स्कूल लेवल पे भी बच्चों को हर चीज होगा। प्लास्टिक जो है बच्चों को कम मिनिमल यूज करना है प्लास्टिक का क्योंकि बच्चे जो है कभी कभार प्लास्टिक का बोतल भी लेके आता है फेंक देता है हर जगह तो दून गांव में गांव स्कूल लेवल के चाहे इवन की यूथ भी गांव दिया लोग इन्वॉल्व शहर को शायद गुजरा यूथ चेयर जर बना गाती यूथ ला एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस ग्रीन एंटरप्रेन्योर सो एनवायरमेंट पर आप दो एग्रीकल्चर की तरफ से गांव दून चाचा। तीसरी बात हमारे बिजनेस लेवल पे रेस्टोरेंट हो होटल्स हो हर जगह को एनवायरमेंट दो। तीसरा हमारा लोकल पंचायत LHDC है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है खुआ मिशन लेफ्ट ने वो लखथुत्ता से कहा था आगे हो सिर्फ मिशन लाइफ जो है वो इन्वायरमेंट तक महदूद नहीं रहेगा अपने गला बस से लाइवलीहुड का भी वो हिस्सा बन सकता है। जितना आप ग्रीनरी लगाएगा प्लांट ज्यादा आएगा तो उसका जो प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली किसी लाइवलीहुड का रॉ मटेरियल बनता है दिया खुरा गता एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरफ गतंग चीजें
1: मशीन
0: रुकी वर्षिस
1: अलाम साहब ता मना मता प्रोग्राम पे अनु टाइम पर मम्मी सोचो सेवा संकल्प अभियान है न्यूज़ मता नॉर्मल सर्विसेज का

दासन सापायंतेस सेवा ही संकल्प अभियानी फेसपा प्रोग्राम जिसना अभिनेत पी मीडिया में का दिवा आकाशवाणी करगिल मीडिया में पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामीन अब से लेकर रात के 10 बजे तक आप हमारे नशरियात मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज, मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज, एफएम 1.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल एप्स न्यूज जोन आईआर पर भी आप हमें सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मीडियम वेव तौचिकना गबग्याना निशुज विनेश भी किलोहर्ट्ज, मीडियम वेव टुग्याना निशुज विनेश भी किलोहर्ट्ज, एफएम 1.1 मेगाहर्ट्ज या मोबाइल एप्स न्यूज जोन एआर का आकाशवाणी करगिली का नजर न्योत दिदिंगी जापू ब्रेस्पुत अक्टूबर से चिक दिदिंग फ्रोचुपत पी प्रोग्राम खुरे गचायती दोनों लेपसेत गची जूना सलाम पो फुतमचन सोशिक सखमा सखनाला दुआया प्रोग्राम सदाकल लगो जुबेत दी प्रोग्रामी रक्से का यन मजर सखमा कुरानी तिलावत न तर्जुमा मुल्कान पुई शेख असगर अली जाकिरी।

بسم الله الرحمن الرحيم.

डीआईजी लेहना करगिल दोना चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड कुशाल कुमार शर्मा ना एसएसपी करगिल ना ए एहलकारुनिस दी लसुनला तलुक जख्सियत। करगिल हॉर्टिकल्चर लुंगी छोसना हुसैनी पार्क करगिल ला लोकल मिमांग सुनी दोना सगेत बद बखानुनी छोसना खजा सुन्नस तगजीउनी दोना हॉर्टिकल्चर ये चलागुन्ना सुमा जाती टेक्नोलॉजी ना एक खाचन लुंगुनी लसुन्ना ग्रल सिरुनी तंजोक सिफिया एग्जीबिशन चिगी ग्रल बसियत मिन लद्दाख रामांग रियुली यर्गिया सी चेयरमैन सीसी डॉक्टर जफर आखोन दी एग्जीबिशन पे गोजुक बसे दयानु खाचन डोन फेजोस्ते का खागलेस पिन एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा मुश्तबा मोसवी दोन आगा सईद अली काउंसलर पॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर संग दियांग खागलेस पिन दी वक्सला करगिली खजासुन फेसन कुश्चुन चुली चोसमन थम तबी ड्रोनुन नसोमा टेक्नोलॉजी मशीनुन स्तनजोस बेफिया जक्सोतमिन यानी मुखबरन संग जिनशेज दबाजत खुदाई फगरेंग।

0: د سن صفایان تیز پورګي خبرون لاس نه بنت پین میډیا میکا دی آکاشوانی کرګلین وخت په تسوت غنفتون سو کا ستر د لکسي هګورګن مزر ډاکټر سمیتا شری واستو نه ډاکټر الکا چودري کنا.
1: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका. श्रोताओं, कोई भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं दिखता है जिसको किसी प्रकार का तनाव ना हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो प्रौढ़ हों या वो बुजुर्ग हों. हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है और उसके जीवन में किसी न किसी तरीके का तनाव है. तो इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव से. डॉक्टर साहब एक जानी मानी मनोचिकित्सक हैं. नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में.
2: जी नमस्कार अलका जी.
1: स्मिता जी, सबसे पहले ये बताइए कि तनाव आखिर है क्या?
2: हाँ, जैसे आपने पूछा कि आखिर है क्या, ऐसी क्या ये बड़ी चीज है जिसके बारे में हम लोग पूरी दुनिया जहान में चर्चा है कि तनाव है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है. ये एक मामूली सी चीज है. जब हमारी जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो एक्सीड कर जाती है हमारी सिचुएशन है उसको डील करने से, मतलब हम उस प्रॉब्लम अपनी परेशानी को सामने की डील नहीं कर पाते हैं तो हम तनाव में आ जाते हैं.
1: डॉक्टर साहब ये बताइए कि तनाव के लक्षण क्या क्या होते हैं?
2: इसके लक्षण क्या है? जैसे सपोज आपके सामने, आप आराम से कमरे में बैठे हैं और आपके सामने एक शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे, है ना? तो जो जो आपके अंदर परेशानी होगी, जैसे आपका एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका बहुत तेज दिल की धड़कन हो जाएगी, आप के पसीने छूट रहे होंगे, आपके हाथ पैर कांप रहे होंगे, आपको बहुत अत्यधिक डर लग रहा होगा.
1: जी जी.
2: आपको ये लग रहा होगा कि मैं कुछ हो जाएगा मेरे साथ, मैं मर जाऊंगा, या अब तो कुछ इस तरह से कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है.
1: जी जी.
2: तो ये जो चीज है, बट अगर मान लीजिए यहाँ तो सामने शेर है तब ऐसा हो रहा है.
1: जी.
2: तनाव में क्या होता है कि शेर नहीं है तब भी हमें इस तरह के लक्षण हो रहे हैं. तो ये इसके लक्षण हैं कि जब सामने कोई ऐसी परेशानी नहीं दिख रही है सो कॉल्ड, बट फिर भी हमारे अंदर ये इस तरह के लक्षण आ रहे हैं कि हम बहुत घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, मुंह सूख रहा है, हम बार बार हमें पेशाब हो रही है, या बार बार हम हाथ पैर झंझना रहे हैं, झंझनाहट हो रही है, पेट में मरोड़ हो रही है, ये सारे के लक्षण होते हैं जिसको हम एक्यूट स्ट्रेस, एक्यूट एंग्जाइटी बोलते हैं.
1: अच्छा डॉक्टर साहब, तनाव से हम किस तरीके से बच सकते हैं?
2: जरूरत से ज्यादा यदि हम अपने आप से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं तो हमें तनाव होता है. अगर हम उस एक्सपेक्टेशन को ही कम कर देंगे तो तनाव में तनाव नहीं होगा.
1: जी.
2: हम अपने से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं.
1: और हम अपनी दिनचर्या में ऐसे किस तरीके के चेंजेस ला सकते हैं, ऐसे क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे हम तनाव से बचे रहें?
2: अहम और बहुत अच्छा सवाल पूछ. सबसे पहले जैसे आप अपना टाइम से उठें, सुबह जल्दी उठें, थोड़ा ध्यान करें, भगवान का थोड़ा सा मनन करें कि भगवान आपने बहुत अच्छा हमें मौका दिया है, आज का दिन बहुत अच्छा है, यहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा से अपना दिन शुरू करें.
1: जी.
2: उसके बाद थोड़े ध्यान करें, थोड़ा योग करें, अनुलोम विलोम है, इस तरह की कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे फेफड़े को पूरा फुलाती हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वो लेवल बढ़ाती हैं. तो इस तरह के एक्सरसाइज करें, थोड़ा बाहर खुले में टहलें, और उसके बाद से अपना एक कार्य योजना बनाएं कि हम क्या क्या काम हमें करना है, एक दिन का एक पूरा रूटीन बनाएं, और जो जो हमारे कार्य योजना हमने बनाई है उनको एक एक करके हम पूरा करते चलें.
1: खाने पीने का हम किस तरीके का ध्यान रखें कि हम तनाव से बच पाएं?
2: नेचर से जितना ज्यादा जुड़ सकें उतना अच्छा है.
1: जी.
2: नेचुरल फूड्स खाएं.

0: ज्यादा उनको प्रोसेस ना हो, प्रोसेस फूड ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, नेचुरल चीजें खाएं जैसे हरी सब्जियां, साग हैं, फ्रूट्स हैं, ज्यादा पके हुए ना हो, है ना, जिससे उनके जो विटामिन की जो मात्रा है वो उतनी ही कंजर्व, उतनी प्रिजर्व रहे
1: जी।
0: तो यानी कि आप सही से समझ सकते हैं कि तेल मसाला हो गया, बहुत ज्यादा गर्म भोजन हो गया या बहुत ज्यादा तली भुनी, एग्जैक्टली तो ये सारी जो है जो हम लोग पेस्ट्री, बर्गर, बन, केक और जिसमें बहुत ज्यादा फैट है, बहुत ज्यादा शुगर है, तो
1: जी
0: एक्सेस चीजों से हम बचें। एक्सेस ऑफ, एक्चुअली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
1: जी जी जी
0: तो चाहे नमक हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो मतलब और सारी चीजें, तेल घी नुकसान नहीं करता है,
1: जी
0: उसका
1: जी
0: एक्सेस नुकसान करता
1: जी
0: है। तो खाना सब खाएं पर एक एक बैलेंस वे में खाएं।
1: तो हम आशा करते हैं कि जो चीजें हमें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, हमारे श्रोता उस तरीके से उन चीजों को अपने आहार व्यवहार में लाएंगे, अपना खान पान सुधारेंगे और अपनी आदतों में कुछ सुधार लाएंगे और इससे वो तनाव से बच सकते हैं। अगर पूरी तरह नहीं तो उनके तनाव में कमी तो आ ही सकती है। डॉक्टर साहब, आप हमसे जुड़ी और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दक्षिण सकवा यंत्र दिलुक सिहा गुरिंग नेपिन डॉक्टर सीमिता श्रीवास्तव न डॉक्टर अलका चौधरी के न मीडियम एका दिवाकाशवाणी कारगिली नुवासपुर तुसुत अगाने मिले सुमचु सोहा सुनसु का सता सुतखे के मजा अकबर अली खानी का न
3: बिस्मिल्लाह।

खुदा थद पे अगर सोना स्वयं पो मुअक्कल गए दुआ बे फिया मलकून।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 तक का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 पर दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
6: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सुगंध क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
7: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनी चौकन्न रहे।
8: तीन महीने में पैसे डबल,
9: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
8: क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ
9: और कल होगा भी नहीं।
10: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
11: ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं।
10: और RBI कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे।
12: और फास्ट रिटर्न से महफूज रहके
10: और फास्ट बोलिंग से भी।
13: RBI कहता है जानकार बने चौकन्ने रहे।
14: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

بيونغر صاف ما نبي فيا بودكاست

0: Morgens.
1: Das sind Sachpayantes, Thomas Tutkaris Nabinut Pin Mediumika, Duakashwani Kargilin, Waxpo, Tusur Tugnefestonsu, Kasata, Deluxe Program Jing and Mazat. Program Puchukhan Pain, Tahirabano, Program Producer Pain, Gulzar Hussein.
2: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ वाह दिन बन गया
3: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: दस लाख की लॉटरी

0: कंप्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: ता सो इंक्लूजन जबना इनको भी इन चीजों में लाना है जरे
1: लाना है
0: हा
1: जरे हवो
0: चाहे वो
1: हाँ
0: स्कूल सो दरें अति बोमोन ला अलग अलग स्कीम्स ता सो अलग बोमोन ला स्कॉलरशिप ता सो ताकि बोमोन ला चीज तो खुंती राइट सब से वो पीछे ना रहे
1: ना
0: जरे
1: रहे
0: हा
1: जरे हवो
0: ओ
1: दक्षण
0: तो
1: है ना
0: गांधी जी मेन
1: पति
0: मकसद कुजा
1: ओना
0: इन मिन माया
1: रिजर्वेशन सीट बोमोला 33% दक्षा बोमोले ओचुन चु देबु
0: कैसा
1: दक्षा
0: कैसा
1: आता गा दिनिक छाना का तो दोन दक्षा आता कुलेर दक्षा पचार गोशिन पाया हा
0: कैसा है
1: बख्शीस बो बख्शीस नो मो यारिस मन अर्दे मो मोस छाना दक्षा बोमोल हा जो गांधी जी दिसपेरे कना खों ची शेशिगलेन मर गोशिन
0: गांधी जी जैसे कि जरा पहला अजर की गांधी जी हा बोमोन हर जगह नो स्टेस हा कभी
1: ओना
0: अलग मजाक सोसाइटी
1: मजाक
0: से
1: सा वो
0: तो दैना चीज पे कहना आता दू पता चार वो सिंधु की गांधी जी बोमोन लजर से की रंग नंगो हौसला जोक रंग चम चीज जिम्मेदारी उतना उतनी जिम्मेदारी न तो खुद पे भरोसा रखो दोना चंग देना रंग नंगो में ची ची शो तालीम ची उतना ची यहाँ
1: हुनर
0: स्किल ची
1: चोदना
0: उतना
1: हाँ जो
0: और
1: स्किल
0: दो
1: चोदना ना
0: रंग कम्युनिटी फील पूरा सारा बोझ देते
1: सारा
0: हैं
1: बोझ
0: जैसे कि यार अगर आता डॉक्टर्स चो डॉक्टर्स चो ना खुश खुरी समाज ही फील देना
1: लास
0: मार्गो तो लास
1: बरगोस
0: भरगोस टीचर चो
1: बख्शीस
0: ना खुश खुरी समाज ही फील
1: समाज
0: भरगोस
1: पिपार्टी फ्रूना साफ था मरगोस
0: गाती नंगोस पे ची योत ना उदोस गाते समाज ची फील तोंग जरूरत गांधी
1: गांधी
0: जी
1: जी
0: मेन
1: सा जो
0: मकसद
1: ना
0: पोदे होत की रंग नंगोस पे ची ची शी योत यार हाँ
1: ओना
0: उदोन समाज के लिए सरफ करो जरूरत
1: सर्व
0: पे
1: करो
0: तो
1: जरा
0: गांधी जी के
1: बोना
0: नाते दिया सबक लेन मरगोस इनका भी हिम्मत नहीं हारना है या हिम्मत का लाज बस जैसे गांधी जी हिम्मत का लाज बस अंग्रेज होने का नाता आजादी थोप चोस
1: आजादी थोप
0: न तो
1: चूस
0: गाता दरिया इन्ना गाती इंडिया इन्ना गाती करगिल इन्ना कुछ भी ऐसे गाता इश्यूज दांग यो था
1: यो
0: गाता
1: था वो
0: तो
1: ना
0: उन इश्यूज को गाते समझ के और उन्हें गाते लेस बसे तो उन हल बचाए दे गाती मेन मकसद पुदे इन्मिना गांधी
1: बख्शीस
0: कैसा
1: बख्शीस नमो सकिने एस्मिन मनर दे मोमोस चैनल ला जुक पिके यारिस गाती प्रोग्रामिंग कन अच्छे नमो काका फोन ला यारिस ची यारी ची समझुग मोलेट बख्शीस
0: ngas de ataman inna chistimon sus ka to di program pungen no na ngas de azret ki rang bomon kabi kam masom shik rang bomon la tik bas se sa tan shik ha
1: बख्शीस
0: don rang bomon hifazat bo shik kabi matlab khos khuri rai genti chan pula ka to yak no ro tik bas ngyan cha ha
1: ओ ना
0: koi
1: जो
0: career pan khuin yam bo sat tan cha
1: ओ
0: ar
1: ना
0: khwa chi chi shi khuri zindagi yam
1: बस इन
0: फैसले
1: ना जो
0: बना
1: ओ ना
0: दो ठीक बस इंग्या ने खोए सात तंग से खोए कनाक टीचा खोए छोटे छोटे खोस फैसला का तो लेना दोनों खो मौका तंग चाहे हर चीज में खो ची बस नहीं होना दोन बचो चाहे और
1: बचो
0: सबसे
1: चाहे
0: इम्पोर्टेंट बात दया दुख पे की अंगाती मुआशरे दी होत की ओहो अंगाती बोमोज दू बना मीस चीज अस्तिन हला
1: ओ
0: जाए
1: ना
0: मीस चीज अस्तिन के मारे मीस हजा
1: मिलता
0: हाँ
1: गोशिन
0: मिलता
1: हाबो
0: रोशा
1: मिस
0: क्योंकि मीस चीज अस्तिन दे भी देने आनो अंगाते
1: मिदुक
0: अंगाती
1: परोशिन
0: बोमोन
1: रा
0: ची
1: खुदा ना ग्रख से
0: ओ
1: लाज
0: या
1: बार गोशिन या आज
0: गाती या सोसाइटी अंदु थों पे किया आतामानी इज्जत पो बोमो नहीं लगा यो तेरे
1: जबा
0: निदें
1: तक्षी
0: आते सा
1: ओना
0: ओ
1: मिस
0: तक
1: चिक्षी
0: शिबेनु
1: बेटे
0: की बुझाने लगा मैं बोमो नहीं लगा उस
1: राइट
0: तेरे बोमो नहीं का सोसाइटी सोसाइटी प्रेशर चितामनु
1: प्रेशर से
0: आतामे
1: ओना
0: प्रेशर
1: बख्शीस
0: चितामना कुछ ऐसा भी बोमो उन्हों की खुंती सपना का तो वो वही पे
1: हाँ
0: अधूरा छोड़ के जगह नुक
1: उनमें
0: पाया था
1: होता है अंदर का
0: अंदर होता है
1: मगर
0: या
1: खो बाहर खुल के
0: खोल
1: वो
0: के जर बगे
1: जर
0: निंदुक
1: बयान
0: पाया
1: में
0: था
1: खा बयान
0: आतामे
1: में
0: इज्जत चिलता से
1: तसे
0: हा
1: ओना
0: मतलब खा
1: मिस
0: मतलब
1: चांग जरबे ते
0: निश
1: ही जैसे
0: चांग
1: कि
0: ओ
1: अरेस
0: या
1: ना मोल साया कि मिस चांग जरबे ते ही
0: मिस
1: जिदे
0: चांग जर
1: सोंग
0: में
1: ओना
0: तदर चेस्पो दोस्त गाती बोमो गांगमा मतलब ची सोच दोस मैंने खाची हिम्मत डाउन सोच दो
1: टर्न
0: जैसे
1: सोंग सोंग
0: गाजा
1: बख्शीस
0: गाची सो गाती स रिसर्च
1: साया कि मिस चांग जरबे ते ही
0: मिस
1: जिदे
0: चांग जर
1: सोंग
0: में तदर
1: ओना
0: चेस्पो दोस्त गाती बोमो गांगमा मतलब ची सोच दोस मैंने खाची हिम्मत डाउन सोच दो
1: टर्न सोंग
0: जैसे
1: सोंग
0: गाजा
1: बख्शीस
0: गाची सो गाती स रिसर्च अनोलता या सरकार अनोलता ना बोमोन खाची में पंगाचा फिस्ता सिल बच्चा में दादा मान खुंता लो शायद या खोश चीज बाजे खान का
1: जजरबाजी
0: तो यो
1: शिशे
0: दे
1: दे है वो
0: तो
1: ना
0: दो छाइना गाती जो बोमोन है जो हुनर हो ची
1: जो
0: पता
1: टैलेंट
0: ना
1: उनकी उनके
0: खो
1: अंदर
0: आगे
1: है
0: सो साइंटिस्ट चिल्लान चाहे होता खो
1: ओना
0: रिसर्चर चिल्लान चाहे
1: पूरा
0: होता या खो डॉक्टर चिल्लान चाहे होता तो
1: पूरा
0: कुछ मुआशरे गति सोसाइटी प्रेशर पर उसको कभी आगे बढ़ाई छछ
1: छछु
0: मिनु पा
1: जमीन
0: तो गस
1: बख्शीस
0: गति करी के लिए आवाम का दूस जत की मिस चीज अच्छा स्पोर्ट अच्छा स्पीकर रहा
1: माफ तो सबो
0: बोमे सबसे बोमे ख्वाब उन ओरी का टूटाई मचा जो है
1: मचा
0: कि
1: जो
0: उनको
1: है
0: आगे
1: हबो
0: बढ़ाओ हाँ दाना चो अगर खाची का फाइनेंशियल प्रॉब्लम सो से तंग
1: सो
0: निंदु
1: कमा
0: या
1: तो
0: दे
1: बख्शीस
0: फिला गति गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स और
1: तसन
0: स्कॉलरशिप्स
1: हबो
0: और
1: लोक
0: ना
1: माना लोकसो लोकसो सिक्किम
0: लोकसो
1: जक्सियोत
0: यो दोन
1: गाचो ला सिल ना
0: गामा
1: गाचो ट्रेनिंग
0: ओना
1: बना
0: कैसा है दोन गामा या
1: बख्शीस
0: पता बस है जैसे बोमो खाची इंटरनेशनल पीएचडी बाचा सियो मन
1: ओना
0: यहाँ
1: ओना
0: यहाँ फाइनेंशियल जरे यहाँ सोसाइटी चीज अच्छी जरे
1: जरे
0: दोन
1: उन
0: जरे गाती तामे दे तो
1: तमे
0: दोन
1: बख्शीस
0: गामा ठीक बस है समझ बस है आतामा ने संस्था चगा तो स्कीम रिख दुख जरे या तो
1: ओना ओना
0: स्कॉलरशिप रिख या बोमो खुरी कना राइट से
1: ओना
0: बोमोन आगे बढ़ाई बचो जाता कि गाती मुआशरे बोमो ने कंट्रीब्यूशन पो ज्यादा ख्याल

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Nasan sampai antes program yang ini pun ada nama ni fia media mereka di akash mana kerjain kasata Muhammad Akhil kanar sama tu kegen mazat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Miriamika, Divakash Manikar Gilin, Waxpo to Sot Urduna Menegis Sarachendu, Kasata, Purgi Habarulas, Navazat.
1: Kam premium, zyada bonus, apno ke liye sabse sahi, RPLI. इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: इस अच्छी मॉडल
1: ये जो हफ्ता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक, इसका फोकस यही रहेगा कि जो हमारे दूर दराज इलाकों में हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो यंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, बच्चियां हैं, उनको इन पर फोकस करना है और उनको अवेयरनेस देना है रिगार्डिंग द ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका अर्ली डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं और सेल्फ एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है और जब किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स है, ये सब हम अवेयरनेस देंगे, जिसमें हमने एक शेड्यूल रखा हुआ है कॉलेजेस में और हाई सेकेंडरी स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, पूरा हफ्ता जो है एक अवेयरनेस का हमने ये शेड्यूल रखा हुआ है।
2: जितना हो सके अगर हम अवेयरनेस देंगे पब्लिक में, उससे एक फायदा होगा कि अर्ली डिटेक्शन होगा, कि टाइमली उसको ट्रीटमेंट मिलेगा।
3: बीजेपी मंडल हेडक्वार्टर संकोच ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर संको शोहमो थंगो चेचेसना चाइल्ड पागना हुकूमती बिल्डिंग उनी ग्रलना ब्योरना यम्बो जकपीफिया शोहमोल तालुक बजरे जोवासीन खुंती शोशोक पे मंडलिस हुकूमती बिल्डिंग पे लसुन सिंह को मिंदुक जेरिन दीस गो न बरबन शख्स दोना शीशा नंगर गला जोस्ते का मजकपा सुच शख्स दुगजरे योतिन यंगकोंगस दियुन शोसमोर चोजरे छोरतांसेत मंडलिस फ्रुनी पार्क पेलता लुक्स फेसन फ्रुनीर डेलुक्स ना स्ट्रोंग लुक्स स्कोरन सिंगिंग कोम चार गोसुक जरेन बीजेपी मंडलिस योम एरिया सेला सुन नि स्कोर लंग हागोन वन चोजरे छोरतांस यंग वीडियो संकवा थंगो चेचेस नादी इलता लुक्स बसे दीकर गोजदोती गोंबाउन लेंजरे छोरतांसिन गवर्नमेंट मॉडल हाईस्कूल ब्यातांग शिलिक से युटी लदाख टेक्वांडो चैंपियनशिप सर एस वी लस्तु निज नई शोर से दुर्गानु खागलेन खान फ्रू चुपदुन ला फेपसुसी प्रोग्रामिंग ग्रल सिर बसियोत पिन इंडियाज इंडोर स्टेडियम लिया मल्लख्योंस खान दी चैंपियनशिप में खागलेन खान फ्रू ने फेपसुसी दी प्रोग्राम सना लदाख टेक्वांडो एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी इनायत अली फेस्पाडोन फोज जुक्सियोत पिन फेस्पाडोन फोज दोनों स्कूल हेड मास्टर नास परवीन इस दी वासला जवान एथलीट सुनला मुबारक जरिन स्कूल इंतजामियाना उस्ताद दोना कोच उनला दीर्चने प्रमोशन चोचे का यंग खोंगा दी मोकान चजदे बचे का मुबारक जरिन समझू सकेंगे सी थ्री यूटी तो जूनियर नेशनल थंगटा चैंपियनशिप 2026 पे इंडोर स्टेडियम कम्प्लेक्स पोलो ग्राउंड श्रीनगर लम्बा लख्योंस खान इनमिन यंग दयानु यूटी लदाख थंगटा सोपाउस मेडल जबीर गैलिन दयानु कुशमुली मेडल निस दोना ली तमगा निस गैलिन काचो मोहम्मद अली खान दोना मोहम्मद सादिक कुशमुली तमगा यंग सईद मोहम्मद जवाद ना तबस्सुम फातिमास ली तमगा लगा लेंसकानिन नामजा दिरिंग करियु लंगिमा दोति किमोथिक पुनी शुर सक्सम शरीर ट्रुक डिग्री सेल्सियस यंग गुंदा छानी दोति इनसे थिकपुर दुना शरीर सिफर डिग्री सेल्सियस तखनसों दियाने मुखबरन संग इजन शजदिक बाजत खुदाई फगरेंग

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शन।
1: मेरे मुका दिवा आकाशवाणी कलीन वास्पो तो सर दुनिया में निशुनी छिंदो कसा ता आकाशवाणी श्रीनगर करना उर्दिया नो खबर उन तफसरान रिलेवे रिलेला डाउन बाजार।
2: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सैयद मुबशिर रफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। श्रीनगर में रन फॉर यूनिटी के मैराथन का इनेकाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया दौड़ को इत्तेहाद, अज़्म और इज्तिमाई कुव्वत की अलामत करा। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 नोटिफाई, पॉलिसी साफ सुथरे नकल हमल के फरोग के लिए करेगी 6 साल नक्शेरा फराहम, वजीर आला। वोटर फहरिस्त में हर अहल वोटर का इंदराज बनाया जाएगा यकीनी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के माबेन ईरानी कप क्रिकेट मैच का आगाज। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो फिटनेस, नज्म जब्त और भाईचारे को अपनाते हुए मुनशियात से दूर रहें और कौम की तामीर में अपना किरदार अदा करें। आज श्रीनगर में इत्तेहाद के लिए दौड़ नामी कश्मीर मैराथन की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है। हमारी शनाख्तें अलग हो सकती हैं लेकिन कौमी शनाख्त एक है और भारत मुत्तहिद है। हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट ने खबर दी है कि इस दौड़ में मुख्तलिफ जुमरों से ताल्लुक रखने वाले 6000 से जायद रनर्स ने हिस्सा लिया। LG ने कहा कि यह दौड़ महज रफ्तार का मुजाहिरा नहीं बल्कि इत्तेहाद, अज्म और इज्तिमाई कुव्वत की अलामत है। उन्होंने दौड़ में शिरकत करने वाले नौजवानों के जोश जज्बे को सराहा।
5: युवा मित्रों, मैं आज विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि आपने कश्मीर मैराथन रन फॉर यूनिटी के जरिए एक संदेश दिया है कि एकजुट भारत के सामने कोई लक्ष्य बड़ा नहीं। सभी रनर्स ने यह भी संदेश दिया है कि उनका पार्टिसिपेशन साझा भविष्य में एक महत्वपूर्ण निवेश है और उनकी दौड़ केवल अपने लिए नहीं बल्कि वो जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी के लिए दौड़े हैं जो एक बेहतर जम्मू कश्मीर और भारत का सपना देखता है। मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का हर नौजवान नशे से दूर फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बने और अपनी मेहनत, अनुशासन, सहन शक्ति और जुझारूपन से स्वयं अपना मुस्तकबिल लिखे।
4: तकरीब पर DGP नलिन प्रभात, ADGP आर्मर नीतीश कुमार और ADGP CID MK सिन्हा समेत पुलिस व सिविल इंतजामिया के आला अफसरान, मारूफ खिलाड़ी और बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद।

0: या देने वाले श्रीनगर के शब्बीर हुसैन खान ने इस दिन की अहमियत के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
1: आज वर्ल्ड में ये पूरा दिन मनाए जाते हैं कि वॉलंटरी जो काम कर रहे हैं ब्लड डोनर, तो उन सिलसिले में ये मनाए जाते हैं। तो हमें कैंसर पेशेंट के लिए हेल्प करना चाहे और जो थैलेसीमिया बीमार है उनके लिए मदद करना चाहे, वही सबसे बड़ा चीज मैसेज है हमारा। और जो ब्लड डोनर या आम लोग हैं वो अपने ब्लड कार्ड के साथ अपने ब्लड ग्रुप लिख कर रखें, क्योंकि इंसानी जाने बच सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को भी हम तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि उसने इसके लिए काम किया है। तो सूरत है यही कि ओ नेगेटिव या बी नेगेटिव के लिए तैयार रहना चाहे, कभी भी चाहे अगर कोई भी सुने, रेडियो का अहम रोल है ब्लड डोनर्स के साथ, क्योंकि वो इजिली मैसेज होते हैं, क्योंकि पिछले जमाने में भी आज के जमाने में भी। तो इसलिए मैं रेडियो का भी नहायत शुक्रगुजार हूँ।
0: इधर पोलो ग्राउंड श्रीनगर में भी आज खून का अतिया देने का एक कैंप मुनक्कद किया गया, जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ सईद दरख्शां अंद्राबी ने किया। इस कैंप को यूनाइटेड वेलफेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने संकल्प अभियान के तहत मुनक्कद किया था, जिसका मकसद रजाकाराना तौर पर खून का अतिया देना और इसकी अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना था। आज बुजुर्ग अफराद का बैनुल अक्वामी दिन भी है। ये दिन हर साल 1 अक्टूबर को समाज में बुजुर्ग अफराद के अहम किरदार, नीज, उन्हें दरपेश मसाइल और उनके हकूक को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज कई मकामात पर मुनक्कदा प्रोग्रामों के दौरान बुजुर्ग शहरियों की जरूरियात को समझने और उन्हें माशरे में फाल और बावकार मकाम फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क बड़ी तेजी से इस्लाहात की राह पर गामजन है और इम्तिहानात लेने वाले इदारों को भी इस राह पर आगे बढ़ना चाहिए। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी की सदसाला तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इम्तिहान को सिर्फ एक सरगर्मी के तौर तसव्वुर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इम्तिहानात के साथ मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात को मुनक्कद करने में कुछ माह की ताखीर भी नौजवानों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है और इसलिए इम्तिहानी निजाम वक्त और यकीनियत के असूल पर मबनी होना चाहिए।
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: वजीर अजम ने कहा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 100 साल सफर के दौरान नस्लें, हुकूमतें, टेक्नोलॉजी और निसाब तब्दील हुए, लेकिन इस इदारे पर अवाम का एतमाद आज भी उसी तरह बरकरार है। श्रीनगर के श्री कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में आज से ईरानी कप क्रिकेट मैच का बाज़ाबिता आगाज हो गया। ये टेस्ट मैच आज से 5 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच खेला जा रहा है। मैच की इब्तदाई इनिंग्स में आज रेस्ट ऑफ इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी खिलाड़ियों के आउट होने पर 237 रन बनाए। जवाब में जम्मू कश्मीर की टीम ने खेल के अख्तिताम तक 2 विकेटों के नुकसान पर 21 रन स्कोर किए। रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से रविचंद्रन 68 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि जम्मू कश्मीर की तरफ से सुनील कुमार और लॉन नासिर ने 3-3 विकेटें हासिल की। वाजे रहे कि ये ईरानी कप रणजी ट्रॉफी के मौजूदा चैंपियन की मेजबानी में रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ खेला जाता है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के अपने सफर के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इन 25 वर्षों के सफर की कामयाबी वजीर अजम के जन सेवा से देश सेवा के जज्बे से वाजे हो जाती है। इस खुसूसी सीरीज के सिलसिले में समाप्त करें स्टार्टअप इंडिया से मुतलिक हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
3: 16 जनवरी 2016 को नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का मकसद मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करना, इख्तिराइयत को फरोग देना और तिजारत में आसानी पैदा करना है। 10,000 करोड़ रुपए के फंडिंग सपोर्ट से शुरू किए गए इस प्रोग्राम की मदद से छोटी मोटी सन्नतों को माली इमदाद फराहम करके मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग के निजाम को तकवियत बख्शी जा रही है और अब इसी प्रोग्राम की बदौलत भारत दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के बतौर उभर रहा है।

0: जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों का प्रोग्राम सुनने वाले तमाम सामिन को मेरा प्यार भरा आदाब। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में सिर्फ तुम फिल्म से एक गीत सुनते हैं, जिसे गाए हैं अमीन साबरी और फरीद साबरी ने। गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम शवन। पहले ये वक्फा।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
5: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सुगंध, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
6: RBI कहता है, अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है, जानकार बनी, चौकन्न रहें।

0: लीजिए दोस्तों, अगला नगमा दीवाने हुए पागल फिल्म से सुनते हैं, जिसे गाए हैं कुणाल गांजावाला, शान और कृष्णा ने, गीतकार है समीर और संगीतकार है अनु मलिक। पहले ये वक्फा।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी नगमा कुर्बान फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की आवाजों में सुनते हैं। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है आनंद मलिक ने। पहले ये वक्फा।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दस लाख की लॉटरी मेरे लिए, वाओ।
4: फर्जी ऑफर से होशियार।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इसी नगमे के साथ आज के फौजी भाइयों का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।

Dans आकाशवाणी दिल्ली का ना हिंदी अंग्रेजी दोनों उर्दू खबरों रिलेबे रिलेला डांग बाजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स

0: के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
0: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
4: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ

0: की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
2: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
3: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और के परिवार के साथ खड़ा है।
2: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड।
0: गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
6: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
7: दिल्ली के दिन यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहां उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए

0: अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
2: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
1: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के एमटीएसएच लियानवाला शामिल हैं। अमरीका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, pro-active and good governance, stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast-tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. U.S. sanctions 10 individuals and entities including Pakistani businessmen over Iran military procurement. And in Asian Games in Japan, India bags 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. Indian men's hockey and cricket teams enter final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, pro-active and good governance. The Prime Minister said, the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young

0: रहे हैं और उसे मुत्तहिदा अरब अमारात भेजा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वाकई की जांच और इसके बाद के मुमकिन हमलों से बचने को यकीनी बनाने के लिए इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों को 6 दिन के लिए बंद कर दिया है। ये आकाशवाणी है। हुकूमत ने माजूर अफराद दिव्यांग जंग के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स की मियाद को मौजूदा 1 साल से बढ़ाकर माजूरी की नौयत के मुताबिक 5 साल तक कर दिया है। मरकज ने अहल दिव्यांग जन और मुस्तफिदीन के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स के जारी किए जाने और तजदीद से मुतालिक रहनुमा खतूत पर नजरसानी की है। ये रहनुमा खतूत कल से नाफिजुल अमल होंगे। पहले की हिदायत के मुताबिक दिव्यांग जंग के फास्टैग्स की तजदीद हर साल लाजमी थी। नई हिदायत के मुताबिक 70% से 100% माजूरी वाले अफराद को जारी करदा फास्टैग्स 5 साल तक कारामद रहेंगे, जबकि 40% से 70% तक माजूरी वाले अफराद का फास्टैग्स 4 साल तक काबिले अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नजरसानी शुदा जब्तों का मकसद कौमी शाहराहों के टोल वसूली के निजाम को अहल दिव्यांग जन और माजूर मुस्तफिदीन के लिए ज्यादा काबिले रसाई, शफाफ और सारिफ दोस्त बनाना है। इन हिदायत के मुताबिक जिस्मानी माजूरी वाले अफराद के इस्तेमाल के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई गाड़ियों और दिव्यांग जन की मिल्कियत के तौर पर रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए मुस्तस्ना फास्टैग्स जारी किया जाएगा। इसकी मियाद माजूरी के तनासुब की बुनियाद पर तय होगी। जो माजूरी से मुतालिक सर्टिफिकेट, माजूरी का मुनफरद शनाख्त कार्ड UDID और दीगर मुतालिका दस्तावेजात में दर्ज होगा। ये जाब्ते इस बात को यकीनी बनाएंगे कि टोल टैक्स से इस्तिस्ना मुकर्रर कवायद और जाब्तों नीज अहलियत की शरायत के मुताबिक जारी रहे। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: बिहार मुसलसल सैलाब की सूरत हाल से दोचार है। रियासत की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: सैलाब की सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर वजीर आला सम्राट चौधरी ने राहत और बचाव की कार्रवाई में ताउन के लिए भारतीय फजाइया से मदद तलब की है। गंडक नदी की आबी सतह में इजाफा और कई मकामात पर पुश्तों में शिगाफ की वजह से नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी भर गया है। सारण, गोपालगंज, मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण और वैशाली अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। बागमती और कोसी नदियों के आबी सतह में इजाफे की वजह से दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और सहरसा जिले के कई गांव सैलाब के पानी की जद में आ गए हैं। पटना से आशीष रंजन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपने खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं फौजी जंगी यादगार और फौजी पुलिस यादगार जैसी इमारतों के क्याम के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: कौमी जंगी यादगार का क्याम जनवरी 2019 में हुआ था। इंडिया गेट के करीब तामीर की गई यह यादगारी इमारत मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले भारतीय मुसल्ला अफवाज के नौजवानों को खराज अकदत पेश करने के लिए वक्फ है। मरकजी यादगारी इमारत के अलावा यहां उन 21 बहादुर फौजियों के मुजस्मों के लिए भी मखसूस मकाम है, जिन्हें फौजी खिदमात के लिए मुल्क के सबसे आला तरीन एजाज परमवीर चक्र से नवाजा गया है। इसमें मुरल का डिजाइन फर्ज की अदायगी के दौरान फौजियों की कुर्बानी की अक्कासी करता है। 2019 में आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये मेमोरियल मुल्क के बहादुर फौजियों के जज्बे शुजात की अलामत है। प्रिया मंडल और भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: सरकार ने नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख में इस माह की 31 तारीख तक तौसी कर दी है। वजारत तालीम का कहना है कि दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी से अहल तलबा को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर दरख्वास्त मुकम्मल करने के लिए इजाफी वक्त मिलेगा और मुतालिक अथॉरिटी की जानिब से बरवक्त तस्दीक करने में भी सहूलत हासिल होगी। امریکہ نے ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج لاجسٹکس کے لیے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان خریدنے میں مبینہ مدد کرنے کی پاداش میں کئی ممالک کے 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ دی میڈیا لائن کی ایک رپورٹ کے مطابق پابندی عائد کیے گئے افراد میں ایک پاکستانی کاروباری سمیت اس سے منسلک 3 کمپنیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ کاروباری پاکستان میں قائم کیویلیئر گروپ کا چیئرمین